अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निध आवे ताए सब थाई हुए सहाय।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्रीडिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील ॿुधंदा रहे। थोरी देर में तव्हां भगत कराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तफ़सीलु पेश कंदो। पोइ अॼु तव्हां अदबी गुलशन प्रोग्राम तहत जनाब एस पी मेघाणी खां हिकु नंढी आखाणी ॿुधंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में निशर कई वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी विचूड़, तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर छो त भगत कराम साहब खे ॿुधूं।

बुलबुलू समझ जाए तू एकर बाग जो गुल याक बाग जो बूटा असा के दे जो सांजो जिया पो आए मानी उन के जवाब दिनो ओ मा

2007 ताली दुलारा दिशम में एक हिकमत अमली एंकर जे हिसाब सा रोल थी अदा करे अज भारतीय नेवी फकत को समुंडी सरहदन की निगाहबानी को नी करे पर असि नेवी माशी बचाव इलाकई दायमत ए ताकत के तोजन के बराबर पे रखे हुए तो भारतीय नेवी ये सब कार्रवाई जिम्मेवारी निभाने का मुस्कुन लाइ पान के तैयार लड़ाई लाइ तैयार ए आलमी इज्जतदार फौज पान के बनाया है उन्हें बहरान दौरान भारतीय नेवी के रोल के साराईंदे श्री राजनाथ सिंह रोशनी में आंदो तो नफकत भारतीय समुंडी बेड़न व्यापारी बेड़न के सलामती से उतना आंदो वो है खास कर एलपीजी टैंकर्स के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस में इन ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हलाये वो सब भारतीय नेवी की एक बड़ी हासिलात है भारत पैंजी 85-90% कच्चे तेल की आमद कन्द है लगभग इन में 50% संदस कुदरती गैस समुंडी राउंड जरिए इंडी है तई कर समुंडी रस्त की सुरक्षा मुल्क के मैशत तवान सप्लाई ए बचा तैयारी लाइ घी अहमियत रखे थी बचा क्षेत्र में नेवी पारा पान के भाण के रोशनी में आनीदे रक्षा मंत्री जोर डींदे तो भारतीय नेवी समुंडी बेड़ा वक्त आलमी बेंचमार्क से चढ़ाभेटी कन था समुंडी बेड़न के ताजो जिनके शुमार किया है तेमें 75% सामान डेही आए अगत पिण असि पैं गुर्जन के पान पूरा कदा रहासी श्री राजनाथ सिंह भारतीय सामुंडी सर्विलेंस आर्किटेक्चर के वधिक जदीद करण जो सॾु ॾिनो श्री राजनाथ सिंह साल 2026 के इतिहासिक साल करे कोठियो आहे जो भारतीय नेवी जी रिथा आहे अरिड़हनि बेड़नि खे नेवी में शुमार करण के हिकु साल जे अंदरि भारतीय नेवी जे इतिहास में इहो वधि में वधि बेड़नि खे शामिल करण जो इतिहास रहंदो औरतुनि खे ताक़तवर बणाइण में ख़ासि करे रिक्रूटमेंट ऐं इनोवेशन में जंहिंजो मौज़ो आहे ऑल रैंक्स ऑल रोल्स रक्षा मंत्री ॿुधायो त फ्रंटलाइन बेड़नि में औरतुनि खे मुक़ररु कयो पियो वञे हुन ॿुधायो त घणनि नेवल नेविगेशन्स में औरतुनि जी हिसेदारी रही आहे ख़ासि करे नाविका सागर परिक्रमा वॉयज में श्री राजनाथ सिंह ॿुधायो त भारतीय नेवी खे वधाई ॾिनी त इन भारतीय नेवी कंबाइंड टास्क फोर्स 154 जी गडियल समुंडी फौजनि तहत कमांड कई आहे ऐं हिनखे इलाक़ाई तावन में हिकु अहम योगदान करे कोठियो आहे हुन ॿुधायो त ऑपरेशन सदन रेडीनेस तहत जेको ताज़े कोची में कयो वियो भारत सीटीएफ 154 जी कमांड खई तंहिं में अची थो वञे 276 अमलदार जेके 27 मुल्कनि मां आया 76 फैसिलिटर्स ऐं मौज़ो सां वास्तेदार माहिर तंहिं में 4 बैन अल-अक़वामी इदारनि हिसो वरितो पंहिंजे तकरीर खे ख़ता पूरो कंदे श्री राजनाथ सिंह चयो त भारतीय नेवी हिन वक़्तु लड़ाई लाइ बिल्कुलु ऊची समत ते तयारी रखे थी ऐं सभिनी खेत्रनि में पंहिंजे वचनबद्धताउनि खे पूरो थी करे जंहिं खेसि हर तरह जूं ललकारूं पेश पइजी रहियूं आहिनि श्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सां अलावा चढ़ के गॾोगॾु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सां पिण कॉन्फ्रेंस दौरान टिनि ॾींहनि जी कॉन्फ्रेंस जेका 29 सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर ऐं 1 अक्टूबर 2026 दरमियान हलंदी तंहिं में भारतीय नेवी जा अहम अॻवान शुमार थी रहिया आहिनि इन में ऑपरेशन प्रिपेयरनेस समुंडी सुरक्षा ऐं मुस्तक़बिल लाइ कौत खे ॾिठो पियो वञे तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम अदबी गुलशन इन प्रोग्राम तहत पेश आहे नंढी कहाणी, कहाणीकार जना एस पी मेघाणी।
2: दरवाज़ो खुलियल हो, संजय जी हिमत वधी, ऊंदे में कंहिं शइ सां संदसि पेर टकरायो, शायदि पितल या स्टील जो गिलास हो। खुड़कियो त राति जे सनाटे में सूखे में आवाज़ वॾो बणिजी वियो। हुन सोचियो छिड़ो में ई भॼणु घुर्जे, भॼण में ई भलो आहे, किथे पकड़िजी पियसि त केर पंजू आहीं, वरी हिन खां तुंहिंजे इंतज़ार में दरवाज़ो खुलियल रखियो अथमि, किथे निंड न अचेमि, तूं मोटी न वञी, पंजू आहीं न, जवाबु छो थो ॾी? जी अमा, संजय वराण। हेड़ो चरिया, माउ सां को ईअं रुसबो आहे छा? हेतिरा वरी किथे दर दर भिटकंदो रहे, माउ मुईअ जी एतिरी कावड़, सुठो थियो पंहिंजे घर में मोटी आहे, तस बती ॿारियां। संजय सोचियो, जेकॾहिं बती ॿरंदी, ॿुढी मूंखे सुञाणे वठंदी त मुंहिंजो कहिड़ो हशा थींदो। वरी जेल जी कोठड़ी, पुलिस जी मार, हॾ गुॾ भॼी छॾींदा। दरवाज़े पुठियां बिजली जो बटण हो, दॿाइण सां घर में रोशनी थी। ऊंदे में गुम कमरे में हिकु हिकु शइ उजागर थियण लॻी, ॿ टे कुर्सियूं, हिकु टेबल, हिकु टुपाई झूने ज़माने जी, हिकु पलंग झूने ज़माने जो, कबाट तेवार सां उभी थियल खट हुई। ॿुढी चवण लॻी, मूंखे ख़बर हुई तूं हिकु न हिकु ॾींहुं ज़रूरु ईंदे, इन करे मूं घर जो दरवाज़ो हमेशह लाइ खुलियल रखियो। पाड़े वारा हमेशह समुझाईंदा हुअमि, माई दरवाज़े खे खुलियल थी रखी, कोई घर जा सभु टपड़ चोराए खणी वेंदे। मां चवंदी हुअसि मूं सोन जहिड़ो पुटु विञायो, इन्हनि टपड़नि जी कहिड़ी अहमियत आहे? संजय दिलि में सोचियो, पाण वारे ठीकु थे चयो त पंजो हेतिरा साल किथे हुए, माने त रोई रोई अंधी थी चुकी आहे। ज़रूरु माई जो पुटु मुंहिंजो हमशकल हूंदो, या वरी मां पंजो जो हमशकल आहियां, इन करे हाणे माई चिलाईंदी कोन, न ई वरी जेल जी शिखूं हूंदियूं। माई चवंदी रही, माण्हू चवंदा हुआ त पुट ऐं मरी वियो हूंदो, पर मुंहिंजी दिलि इहो मञण लाइ कॾहिं बि तयारु न थी। अड़े चरिया, मां तोसां मिलण जी आस में हमेशह तगंदी रही आहियां, पर मां जेकॾहिं मरी वञा हा त हा? संजय जी दिलि भरिजी आई, चङी न चओ मां हिन जज़्बात विचां माईअ खे बाह में भरे वरितो। हिकु तरफ़ माई रोई रही, ॿी तरफ़ संजय। हुन जी सॼी माउ नंढपण में मरी वई हुई, माइट जी माउ कॾहिं खेसि ममता सिने न ॾिनो। माइट जी माउ जे संग में सॼो पीउ बि माटेड़ो वहिंवारु करणु लॻो, हर साल हिकु नओं ॿारु घर में जनमु वठंदो हो, खेसि माटेला भाउर भेनरूं संभालणी पवंदी हुई, बदिले में मार फिटकार ताना तुनका। हीअ पराई माई खेसि पंहिंजो पुटु सम्झी रही हुई। माई चयो, राति काफ़ी थी चुकी आहे, तूं हथ मुंहुं धोई वठ, मां मानी पचाए थी वठां। संजय वाराणो, मूंखे बुख कान्हे अमा। माई ममता विचां चयो, बुखे पेट त किथां ईंदे? चई माई रधिणे में हली वई। केतिरनि ॾींहनि बैस खेस घर जो खाधो नसीब थियो, जेल जूं सुकल मानियूं, पाणीअ जहिड़ियूं भाॼियूं, पथर पियल चांवर, या ॿाहिरि कंहिं होटल में बटन सफ़ा कंदे कंदे बचियल खुचियल खाधो। माईअ में घर जी फुर्ती हुई, फटाफट भाॼी रधजी वई, फुल्का पचंदड़ आया। संजय ज़रूरत खां वधीक खाईंदो रहियो, ओगराईअ मथां ओगराई ॾियण लॻो। मानी खाइण खां त संजय जॾहिं हथ मुंहुं धोअण वियो त साबुण सां वरेण जी मेल निकिती हुई। तॾहिं माई कॿट मां के कपिड़ा कढी आई, ही पुट पिणे जी लुंगी अथई, तुंहिंजा कपिड़ा त हाणे तोखे पूरा कोन पवंदा, सुबुह जो टोला नवां कपिड़ा अची वेंदा, पिणे जो कुर्तो अथई। अमा, मुंहिंजी प्यारी अमा, संजय जी अखियुनि मां आसुनि जूं अलोक धाराऊं वहण लॻियूं। माई संदस आंसू घुले रो न पुट सब ठीक थी वो सब ठीक थी वो उजड़ घर वरी वसी वो हाँ तुम पुट पान वे जडे खेस पंजू समझो हो तेन पुछो तो मुझो घर किथे आए पान वे छद चर्चा दीवान तोखे पांजो घर भी याद कोन रहो आए तरह संजय दिस भाई हित शाही फ्लैट ठही विया कैमें शाही इमारतू आन मुझो घर तो कें बैरक में हो पान वे चयस तुझो घर बैरक में ही सलामत है पर उन अगे शाही इमारत ही शॉपिंग सेंटर है पतली घिटी में हलो वन हाँ पर वो माई के सुण पान वे खेस बुधा हो तो तुझे वजन बैद माने कदें भी घर

0: दरवाजो बंद न रखो आए खेस विश्वास आए तो एक न एक डी जरूर वापस इंदे संजय पलंग से लेटो तो माई खेस नटबल जी शरारत बुधायू सजो पाड़ो तो मां परेशान हो कड़े नमूने पिणे एक रात जो घर मोटो तो खेस छाती में सूर पियो तू डॉक्टर के वठन वो हुए जैसे डॉक्टर आयो उनो प्राण पखिड़ो पिंजरों छो डामी चुको हो मुझे समूर उम्र तो में हुई तू वो थी सुख डींदे तुखे तो नहीं चोरी की आदत पई मारूं भी मारूं खाधे बार बार चोरी के इल्जाम में तोखे कढ़ो हो एक भेरे एक शागिर्द किताब चोराई दे रंगे हथन से मास्तर पकड़ो तो मत उन घड़ी मार कुट कई कार्ड में तो मास्तर मथे वारो पत्थर हणी कढ़ो वो डी भागो डी जो तू घर न अची अलाए किथे हलो वे हाँ दर दर भिटकी आयो आई न भली न वंज वरी माँ खा सा दुनिया में को कौन थी दो आए पुटला पंजू संजय सोचो तो पंजू ही हुन जी जिंदगी में केतरी न समानता है पंजू के मास्टर जी मार घजन मजबूर कयो खेस पी जी मार बाबो खर्ची न दींदो हो पहली नंढी नंढी चोरी कई पोए बाकेट मारन की आदत पोए चोर चोर पकड़ो पकड़ो जा आवाज संदस पीछो करन लगा जेकॾहिं पकड़जी पवंदो हो त लतूं मुकूं आॾा उबता हथ भुजा बाद में जेल पुलिस जो डंडो उन करे पिंपरीअ खां थींदो शहर ऐं जेलो मटाईंदो रहियो काफ़ी ज़िंदगी जेलनि रेलनि में गुज़री वई इहो सोचींदे आराम बख़्श बिस्तरे ते संजय खे गहरी निंड अची वई पंजू पंजू उथ पुट ॾींहुं चढ़ी वियो आहे वठ चांहि पी संजय डकंदे डकते मारे तरफ डिठो किथे डी की रोशनी में संदस पोल पधरो तक थी वे उस सफर कमरे में रोशनी हुई पकड़ी पिस्त पर माई जो भ्रम में जारी आए वो मुखे पांजो पंजू समझी रही आए माई चयो मां कम ते वही रही आया संजय पूछो कड़ी कम ते अमां माई चयो त कपड़ा सिबण जे कारखाने में सिलाई जो कमु कंदी आहियां सुबुह नवे खां शाम जो छह बजे ताईं सनान लाइ तेल साबुण अथई नंढपण में तूं पाणीअ खां डिॼंदो हुएं अखियुनि में साबुण पवण सां रोई रोई सॼो पाड़ो मथे ते खणंदो हुएं संजय चयो हाणे त सनान लाइ सिकंदो आहियां अॼु सॼो ॾींहुं सनानु कंदुसि माई चयो जल्दी निकिरजि पंजू किथे थधि न लॻई संजय सोचो त माईअ खे मुंहिंजी ऐं मूंखे माईअ जे सहारे जी ज़रूरत आहे हाणे डोड़ी डोड़ी थकिजी पियो आहियां हाणे चोरी चकारी छॾे शरीफ़नि जो जीवन जीअणो आहे पर माज़ी हुन केतिरा हंधनि ते नौकरीअ लाइ वियो पर घर बार वाक़फ़त ऐं सिफ़ारिश खां सवाइ खेसि कंहिं बि नौकरी न ॾिनी हाणे ठहियो ठुको घर बार सुञाणप सभु मिली वियो अथमि अमां लाइ कुझु करणु खपे इहो सोचे संजय हथ में ॿुहारो खयो साफ़ सफ़ाई बैदि टिड़ियल पखिड़ियल शयूं ठिकाणे ते लॻायूं कपिड़नि खे धोई नोड़ी सुकाइण लाइ वधो दरवाज़े ते बीठो त पाड़े वारनि मां हिकु हिकु थी खां सुवाल अहिवाल पुछण आया हेतिरा साल किथे हुए छा कंदो हुए अकेली माउ जो ख़्याल बि कोन आई पाड़े वारी जंहिं पंहिंजो नालो ईश्वरी ते ॿुधायो तंहिं चयो ॾिस पुटु हाणे वरी घर छॾे न वञि माउ जे बुठा वेझी लठ बणजि माउ खे ॾुख ॾियणु को सुठो कमु कोन्हे शादी विहांव कर जीअं मरण खां अॻु माए पोटे जो मुंहुं ॾिसे शाम जो माई मोटी त कमरे जो रंग रंग ॾिसी अचरज में पइजी वई ऐं भरियल अखियुनि खां चयाईं पंहिंजे पुटु सेठ साम्हूं तुंहिंजे मोटण जी ॻाल्हि कढियमि हुन ढेर कपिड़ा कढी ॾिना आहिनि ॾिस जेके तोखे पूरा अचनि पाइजे संजय कपिड़नि तरफ़ ॾिठो काफ़ी महांगा कपिड़ा हुआ लॻभॻि रोअंदे संजय चयो अमा तूं घणो वक़्तु मूंखे खाराईंदी जवान पुटु माउ जी कमाई खाईंदे सुए थो छा दुनिया मूं ते लानत न विझंदी सेठ खे चई मूंखे का नौकरी वठी ॾे न माई चयो नौकरियूं खोड़ बाक़ी पंहिंजी मत ठीकु रख वरी घर छॾे न वञि अमा हाणे तोखे छॾे मां किथे कोन वेंदुसि भॼियो हुजे मां त घर वापसि छो अचां राति जो संजय बिस्तर लेटी सोचणु लॻो जेकॾहिं कदा सां सचपच पंहिंजो घर में वापसि मोटी अचे त त माई खे स्कूल ऐं ठग न समझंदी। मां पाकेट मार चोर ज़रूरु आहियां पर दोखेबाज़ न आहियां। मां मूंखे दोखे में कोन रखंदुसि छाकाणि त हुन मूंखे स्नेह ऐं प्रेम ॾिनो आहे, छाकाणि त माईअ मूंखे सॼे माउ जहिड़ी ममता ऐं स्नेह ॾिनो आहे। माईअ जी कोशिश सां खेसि प्लास्टिक फैक्ट्री में नौकरी मिली। महीने बैदि सॼो सॼो पघार हाणे पंहिंजी अमा जे हथ ते रखियो। रुपया पलव सां ॿधी बार बार स्नेह सां संजय जो मथो चुमियो, सॼे पाड़े में मिठाई विराई। हिकु ॾींहुं संजय जो सेठ पमनदास केवलनामाणी माई जे घर में आयो। चई, माई तुंहिंजो पुटु पंहिंजो तमामु लाइक़ु आहे, वक़्तु ते ईंदो आहे, दिलि लॻाए कमु कंदो आहे, मां खेसि ड्राइविंग सेखारियां थो, 1500 पघार ॾींदोसांसि। माई जे लाइ ॼण सोग जो सुख मुयसरु थी वियो। वक़्तु सिर खाधे, सुठी नौकरी ऐं सुठनि कपिड़नि सां चेहरे में चमक अची वई। पाड़े वारनि जिन वटि शादीअ लाइ धीअरूं हुयूं उहे खेसि नाठी बणाइण लाइ बेताब रहण लॻा। हिकु राति संजय जॾहिं घर में वापसि मोटियो, माईअ खेसि थाली भरे ॾिनी। संजय खाइण शुरू कयो। माई चयसि त पंजू पुट, मूं तो लाइ सुशील ऐं सुठी छोकिरी ॻोल्ही आहे, ख़ूबसूरत आहे, घरो कमकार में बि होशियार आहे, चंदी राम जी धीउ आहे। संजय जी निड़ीअ में गिरह अटकियो, पाणी डुक भरे गिरह खाई चई, अमां पहिरीं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, शादी कंदे या कुंवारो रहंदे? संजय हिमत रखी चयो, अमां तुंहिंजो पंजू न आहियां। मां माई सहजता सां चयो, उन में कहिड़ी नई ॻाल्हि आहे, मूंखे ख़बर आहे तूं पंजू न आहीं। संजय अचे हेठां पुछो, माई मां पंजू न आहियां, तोखे ख़बर आहे कॾहिं खां? उन राति खां जॾहिं तूं हिते आयो हुएं। छाकाणि त पंजू मूंखे अमा न पर अमी करे छॾींदो हो, हू ॾाए हथ सां खाईंदो हो, तूं साॼे हथ सां खाधो। संजय चयो, अमा मां चोर हुउसि, चोरीअ जे इरादे सां आयो हुउसि, तूं मूंखे पुटु समुझो त मूंखे अहसासु थियो त मूंखे माउ मिली वई, लहच वेठां कूड़ ॻाल्हाइनि। माई चयो, छो तूं मुंहिंजो पुटु न आहीं? हाप कंदे संजय चयो, अमा मां तुंहिंजो पुटु आहियां, पर जेकॾहिं सचपच पंजू वापसि अची वञे त हू तुंहिंजो सॻो। विच में कटींदे माई महकम इरादे सां चयो, पहिरीं तूं पोइ पंजू, छा कयो आहे हुन मूं लाइ? दुख ई दुख ॾिनो आहे, मूंखे सुख ॾिनो आहे त तूं ॾिनो, सॼे पुट खां वधीक सॻो आहीं, अहिड़े होला त मारू सुकंदियूं आहिनि। संजय उथी माई जा पेर पकड़िया, ज़ारो ज़ार रोअण लॻो, अमा मां पापी आहियां, जंहिंखे तो जहिड़ी पवित्र हृदय वारी माउ मिली आहे। माई खे उथारे गले सां लॻायो।
1: जनाब एस पी मेघाणी खां हिकु नंढी आखाणी ॿुधाई आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे।

का प्रोग्राम अदबी गुलशन आकाशवाणी जी सिंधी सरसा पेश आहिनि खास खास खबरूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प वापार बचाव तवानाई ए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पंजे टेलीफोन वार्ता दौरान बाहिमी सहकार जो जायजो वरतो। नई दिल्ली दोहा कतार पारा $10 बिलियन सीड़प जो वायदो भारत न किया वाधारे जो जायजो वरतो। इन अलावा आजाद व्यापार करार गाल अगत पिण बहस वहस भारतीय पायलट फ्लाय दुबई फ्लाइट जो तने का आमदा के रोके वरतो जो को पायलट के कॉकपिट जड़े दौरान रोके वरतो ए जहाज की हवाई जहाज की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। अमेरिका रस्मी तौर इराक में पैं फौजन के हटाया इन तरह इस्लामिक सूबे में हलदड़ पैं 12 साल के फौजी मिशन के पूरो किया। एशियन रंदन में भारतीय आर्कर्स ए शूटर्स सोन बिलाक हासिल कई इन तरह भारत के बिलन की टैली टोटल वही कर सट पौत है तेमें 10 सोने बिल सोने जिल 21 चांदी जहा 29 कंसे जहा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुध रहा है हिंसा संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रो है वही असा मुलाकात थी सुबाने सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेज इजाजत सदाई घट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: सिंह प्रॉफिट देना वो तय किया था उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड ऑयल, सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रूपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रूपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रूपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. A report.
3: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after a Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।
0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी अपनी अल्पना। खूबसूरत मौसम और हाथ में प्याली चाय की, उन चुस्कियों के साथ शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की।

जी हाँ साथियों, मौसम का जादू और भी खूबसूरत हो जाता है जब आप सुबह सुबह मुस्कुराते हुए उठें और दूसरों को खुशियां बांटें। जी हाँ, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट एक ऐसी आपके पास कीमती वस्तु है जो अगर किसी की तरफ आप देंगे तो कोई भी प्यार से आपकी हर बात मान लेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही आपका हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी बात मनवा सकते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हर पल जिंदगी का खुशियों से जी लीजिए, यही तो है जिंदगी। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई।

साथियों, जिंदगी कैसी हंसी ख्वाब है जिसमें की मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप मुस्कुरा के मिलते तो आपकी जिंदगी और भी आसान और भी खूबसूरत हो जाती है। जीने का बस यही अंदाज होना चाहिए कि हंसकर उनसे मिलो और हर गलत चीज को नजरअंदाज करना चाहिए। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, चुना है हमने फिल्म प्यार में कभी कभी से। आवाज है शान की।

साथियों, जहां अपनों का साथ मिल जाए वहीं जिंदगी मुस्कुराना सीख जाती है। और अगर थोड़ी सी, कहते हैं ना, थोड़ी सी हंसी रख ली मैंने जेब में और हर गम छोटा लगने लगा जिंदगी में। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। आवाज है निखिल पॉल की और फिल्म है बर्फी।

साथियों, हर सुबह हमें याद दिलाती है कि बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज का दिन आपके पूरी तरह से हाथ में है। तो ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने दिन को, अपनी जिंदगी को, अपने सफर को कैसा बनाना चाहेंगे, उसे और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीने का सबक सीखिए। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं मोहित चौहान की।

साथियों, हर सुबह खुद को एक नई उम्मीद दीजिए। जो भी सोचा है उसे पूरा करने में अपनी सारी ताकत लगा दीजिए। जी हाँ, क्योंकि हर सुबह एक रोशनी लेकर आती है नए ख्वाबों को, आपके उन ख्वाबों, आपकी उम्मीदों को कामयाब बनाने के लिए। बस राह आपको चुननी होती है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। बस उतार चढ़ाव तो जिंदगी के दो पहलू हैं जो कि होते ही रहते हैं। देखिए कैसे समय बीत गया और वक्त ऐसे भागता है, दिन का भी और हमारी जिंदगी का भी। और चलते चलते एक बहुत ही प्यारा गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ, और कुमार सानू की आवाज अलका याग्निक की आवाज में है, लेकिन अपनी दोस्त अल्पना को इजाजत दीजिए। छोड़ जा रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
2: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो

0: हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: हमले के कारण

0: मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सनत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
3: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश

0: की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
3: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support price.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सरसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम से कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तलबीब जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 104 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मचार को हकीकी हीरो करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की शिकस्त हासिल करके सीरीज अपना नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सरसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: यह प्रोग्राम साल भर जारी रहने वाली उन तकरीबात के अख्तिताम की अलामत होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद में शुरू हुई थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपीएससी का 100 साला यादगारी सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया उन्वान से एक किताब का इजरा करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे जिनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन, भारतीय हुकूमत के सीनियर हुकाम, माहिरीन तालीम, यूपीएससी के हुकाम और दीगर शामिल हैं। ये तकरीब यूपीएससी की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली 2 रोजा तकरीब का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन का इनेकाद किया गया था। मुमताज मुकर्रिन ने तकरीब से खिताब किया जिसके बाद मुख्तलिफ मौजूआत पर पैनल मुबाहसे हुए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रूपये फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 413 रूपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देने को तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रूपये फी क्विंटल, जौ की कीमत में 136 रूपये फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रूपये फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रूपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के नफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रूपये से ज्यादा है। इसमें टैक्स भी शामिल है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। قانون کے محکمے کی وزارت آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ یہ ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے اور ان وسائل کی طویل مدتی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے. یہ نیلامی انڈمان کے بحری خطے میں ساحل سمندر دو معدنیاتی بلاکوں پر مشتمل ہے جو مخلوط لائسنس دینے کے لیے ہوگی. وزارت نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ امید ہے کہ اس سے منظم تلاش کی حوصلہ افزائی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ساحلی علاقوں میں معدنیات کی تلاش اور ان کے فروغ کے لیے جدید طرز کی ٹیکنالوجی اختیار کیے جانے کو بڑھاوا ملے گا. سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے. جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل ایک بینچ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ دیوالی کے دوران بعض پٹاخوں کے استعمال کی اجازت دے گی، لیکن اس کے لیے مخصوص وقت کی حد نافذ کی جائے گی. اس طرح عدالت عالیہ نے مکمل پابندی اور بے روک ٹوک پٹاخے چھوڑنے دونوں کے امکان کو رد کر دیا ہے. عدالت نے مذہبی جذبات اور فضائی آلودگی کے نقصان دہ اثرات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا کہ مکمل پابندی عائد کرنے سے دیوالی منانے والے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، جبکہ پورے دن پٹاخے چھوڑنے سے ماحولیات اور بچوں، بزرگ افراد اور بیمار لوگوں سمیت حساس طبیعت کے افراد پر ناموافق اثر پڑے گا. عدالت عالیہ شدید فضائی آلودگی کے دنوں میں دلی قومی راجدھانی خطے اور دیگر شمالی ریاستوں میں پٹاخوں پر بندش سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا معاملے کی سماعت کر رہی تھی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی. عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا. دو منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا. تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کاکپٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز کے استحکام میں مدد کی. اس کے بعد پرواز کے راستے میں تبدیلی کر کے اسے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک علاقائی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارا گیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاز نے اسے سیکیورٹی سے متعلق

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग नट भैरव में बांसुरी वादन। कलाकार थे सौरभ बनौदा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

0: उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: आज हम सब जानते हैं कि भारत तेजी से एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था है जो नई तकनीकों और युवा प्रतिभा के दौर से गुजर रहा है। विश्व भर में भारत की इस प्रतिभा की मान्यता है, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के इस युग में उद्योगों में भी परिवर्तन आ रहा है और शिक्षा और कौशल विकास जो है उस बदलती हुई जरूरतों को पूरा कर रहा है। ऐसे समय में उद्योग, शिक्षा और युवाओं के बीच उनके भविष्य को लेकर के तालमेल बिठाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब पूर्ण विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री पवन जिंदल। श्री पवन जिंदल जी ने उद्योग से लेकर के शिक्षा और युवा विकास तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं को करीब से देखा है और इनकी बातों का स्पष्टता ये होती है कि भविष्य केवल तकनीक का नहीं है बल्कि तकनीक के साथ कौशल, शिक्षा, मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन भी है। आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि जो उद्योग है, शिक्षा है, कौशल है, तकनीक, युवा, सामाजिक जिम्मेवारी और उसका भविष्य है, इसमें लेकर के देखें तो वर्तमान में भारतीय उद्योग के समक्ष अवसर क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं?
3: भारत को 80 वर्ष होने जा रहे हैं आजादी के लिए। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित थी। भारत एक दुनिया का बड़ी जनसंख्या वाला देश है। आज के इस समय में हर व्यक्ति की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। उस रोजगार के लिए आज उद्योग का उतना ही बड़ा महत्व हो गया। युवाओं को पुराने जो हमारे कुटीर उद्योग थे वो बंद हो गए, आज नए नए उद्योग देश में लग रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और स्किल चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक बचपन से एक छोटे बिजनेस से निकलकर आज मैं गुरुग्राम जो भारतवर्ष का आर्थिक दृष्टि से दूसरे नंबर का स्थान है मैं काम कर रहा हूँ। परंतु मैं बताना चाहता हूँ आज के युवा को, चिंता करने का विषय नहीं। मैं खुद एक छोटे से 100 घरों के गाँव में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुआ, एक 10 फुट बाई 10 फुट की किराने की दुकान करने वाले बाप का बेटा हूँ। कोई बड़े आर्थिक सोर्स रखने वाला नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ भारत में बनने वाली मारुति कार उसकी पहली सीट वो मेरे द्वारा बनाई गई 86 में।
2: बहुत अच्छा।
3: मैं 86 में 6 महीने तक जापान रहा, मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं आज के युवा को कहता हूँ टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, कुछ भी मुश्किलें हो, परंतु दुनिया का कोई युवा जो कुछ कर सकता है वो भारत का युवा भी कर सकता है। तो इसीलिए आज हमारे समाज में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मेरे ध्यान में आते हैं। आज एक युवा जो प्रशिक्षण करता है उसके मन में एक डर होता है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, या डिग्री है परंतु इतने बड़ी जनसंख्या के देश में और कंपटीशन में मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। मैं कहता हूँ इसके डर से बाहर निकलिए। आज धीरूभाई अंबानी ग्रुप को पूरे विश्व में बड़े नाम से जाना जाता है, भारत के तो टॉप लोगों में आता है, परंतु धीरूभाई अंबानी को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 10वीं पढ़े हुए थे। पेट्रोल पंप पे नौकरी की, परंतु उसने रिलायंस की स्थापना की। केवल एक 200 गज के ऑफिस में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, परंतु उनके मन में एक दृढ़ निश्चय विचार और प्रामाणिकता से काम करने का एक संकल्प था, उसके आधार पर किया। मैं आज के व्यक्ति को, आज के एंटरप्रेन्योर को जो आज काम करना चाहता है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ 3 बातें किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 कॉस्टिंग, नंबर 3 कमिटमेंट। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर ये 3 बातों को पूर्ण करता है, उसके पास भले ही धन है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, परंतु वो 3 बातों को पूर्ण करता है तो उसको किसी बात की जरूरत नहीं। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे देश में, पूरे विश्व में। एक मसाले के क्षेत्र में MDH महाशय धर्मपाल जो पाकिस्तान से आए थे, टांगा चलाने वाले थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने एक गुणवत्ता युक्त मसाला तैयार किया जो आज पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 है। उन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया, किसी ब्रांड एम्बेसडर को नहीं लिया, वो अपना प्रचार स्वयं करते थे, आज पूरे विश्व में उनका स्थान है। हमारे अंदर उस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये होना बहुत बड़ी बात है, उसके अनुसार अपने कार्य को तन्मयता से करना, उसमें से उस प्रकार का प्रोडक्ट निर्माण करना। हमारा प्रोडक्ट बोलेगा जिसके आधार पर हम सर्वाइव करेंगे। ये हमारे जीवन में आना चाहिए।
2: बहुत
3: दूसरा
2: अच्छा।
3: उदाहरण मैं देखता हूँ, हमारे हरियाणा के ही बाबा रामदेव जी एक संत हैं, उन्होंने कोई इंडस्ट्री की शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु आज भारतवर्ष के बड़े उद्योगपति के नाते उनका नाम जाना जाता है। उन्होंने भी किसी ब्रांड का सहारा नहीं लिया, वो भी एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं। ये आज में काम करने वाले बड़े ही टेक्नोलॉजी अनेक प्रकार के स्किल के काम बदल गए, परंतु एक एंटरप्रेन्योर जब हम बनते हैं, उस दिशा में हम सोचते हैं, तो हमारे जीवन में एक देश और समाज का ध्यान रखते काम करने की निडरता, निश्चितता, दृढ़ता ये हमारे जीवन में आनी चाहिए, तो हम उन सब बुलंदियों को छू सकेंगे।
2: बहुत अच्छा। और आपने एक बात बताई कि कमिटमेंट की बात की, और आज कहा जाता है कि डिग्री पर्याप्त नहीं है, डिग्री से आगे कौशल चाहिए, निपुणता चाहिए। तो कंपनियां जो है युवाओं को आजकल शैक्षणिक आधार पे हायर नहीं कर रही है, नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि उनके व्यावहारिक और मानवीय कौशल को महत्व दे रही है। आपने ऐसे कुछ कुशल लोगों के, सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं। अब बात आती है अध्ययन के समय युवाओं को अवसर देने की या अध्ययन के पश्चात अवसर देने की। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए उद्योगों के बीच और विश्वविद्यालय के बीच एक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र है। आपने इन दोनों को बहुत ही नजदीक से देखा है और इस क्षेत्र में काम भी किया है और कर रहे हैं, तो आपके विचार में विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच ऐसा कौन सा बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक औद्योगिक अनुभव मिले और उस अनुभव का वो अपने अपने स्थानीय स्तर पर भी लाभ उठा सके।
3: देखिए, अभी भारतवर्ष में देश की आजादी के पश्चात एक पुराना एजुकेशन सिस्टम चलता था, परंतु देश के लगभग 60-70 वर्षों के बाद इस देश में विचार शुरू हुआ कि भारत के नागरिक को भारत के एनवायरमेंट के मुताबिक, भारत की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा दी जाए। उसी विचार को लेकर 29 जुलाई 2020 को भारत के मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई शिक्षा नीति उसको मंजूरी दी। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जब हम देखते हैं, उसमें केवल पढ़ाई नहीं, केवल उसमें आगे बढ़ना नहीं, उसमें चार प्रकार के स्टेप आते हैं। पहली से दूसरी क्लास, 5 से 8 वर्ष का बच्चा केवल कहानियों के द्वारा, खेल के द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उस पर बोझ नहीं होगा। दूसरा, 8 से 11 वर्ष तक, 5वीं क्लास तक वो बच्चा अपनी भाषा, कुछ विषयों का, गणित, विज्ञान, इस प्रकार के कुछ विषयों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक जब वो अपनी 8वीं कक्षा तक होगा, तब उसके कुछ विषय और बढ़ जाएंगे, परंतु उसके साथ साथ उसको स्किल का कोई ना कोई विषय उसमें ऐड हो जाएगा। और उसके आगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का विद्यार्थी जो 14 से 18 वर्ष का होगा, उसके लिए एक अलग प्रकार की शिक्षा केवल उसको ऑप्शन है, वो अपने विषयों का चयनित कर सकता है।

0: लचीलापन है वो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ नई शिक्षा नीति के मुताबिक व्यक्ति सब लोगों को बहुत हाईटेक पढ़ाई करने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ जब वो अपनी केवल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करता है, अगर उसके बाद वो नई पढ़ाई करता तब भी अपने जीवन में सक्सेसफुल उद्योगपति बन सकता है, वो बनना चाहिए। पढ़ लिख कर सरकार के पास केवल 8% से ज्यादा नौकरी देने का स्कोप नहीं है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, वो इतनी बड़ी जनसंख्या के प्राचीन पद्धति एक हेरिडेटरी इसकी व्यवस्था थी। उसके लिए एक बात मैं आज के युवा को कहना चाहूंगा, जो आज थोड़ा उसके मन में आता है जब हम स्किल सिखाते हैं। मैं खासकर उत्तर भारत के साधन संपन्न परिवारों में देखता हूँ, जब उनको कहता हूँ कि आज अनेक प्रकार के स्किल के काम है, तो बच्चे के पेरेंट्स बच्चा खुद वो कहता है हमारा बच्चा क्या प्लम्बर बनेगा, क्या कारपेंटर बनेगा, क्या वेल्डिंग सीखकर लोहार बनेगा। मैं अभी अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक रिलेटिव है, किसी कंपनी में परचेज मैनेजर है, उसकी वहाँ 6 लाख रुपए तनख्वाह है। परंतु मेरे गाँव से एक और बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया था, उसको भी मैं मिला, वो वहाँ एक छोटा मोटा किसी लकड़ी के कारपेंटर के साथ काम करता था, वो लकड़ी का काम थोड़ा बहुत जानता था, उसने स्किल था उसमें, उसने वहाँ जाकर किया। जब मैं उसके घर गया, वो पढ़ा लिखा नहीं, परंतु वो 25 से 30 लाख रुपए कमाता है। श्रम के प्रति श्रद्धा का भाव हमारे जीवन में उत्पन्न होगा, मेरे पास गुण है, उस गुण के आधार पर मैं दुनिया में किसी भी प्रकार से सर्वाइव कर सकता हूँ, ये भाव उसके मन में, हमारे देश के नौजवान के मन में आना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं। मैं उसका एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। आज एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर है, और उस विश्वविद्यालय के साफ सफाई रखरखाव के लिए उसमें स्वीपर है। अब स्वीपर के काम को कई बार हम कहते हैं छोटा काम है, मैं कहता हूँ इस विश्वविद्यालय में अगर 15 दिन की छुट्टी के लिए इसके वाइस चांसलर चले जाएंगे तो विश्वविद्यालय अच्छा चलता रहेगा, तो भी। परंतु 15 दिन स्वीपर जिनको हम छोटा काम कहते हैं वो चले जाएंगे, विश्वविद्यालय नहीं चल पाएगा। तो छोटा और बड़ा कुछ नहीं।
1: स्किल के साथ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अनुसंधान का क्षेत्र है, सबसे बड़ी तकनीकी है, लेकिन इसके कुछ लाभ और नुकसान है। तो ये तकनीक जो है, आपको अपने अनुभव से क्या लगता है कि रोजगार के अवसर कम करेगी या युवाओं को उसके लिए अलग से अपने स्किल में बदलाव करने की जरूरत है? और विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए जब हम नौकरी से उद्यमिता तक की बात करते हैं या उद्यमिता से नौकरी की बात करते हैं, तो हमारी क्या एक पॉलिसी या युवाओं को किस तरह के सोच में बदलाव की जरूरत है?
0: आपने AI की बात की, नो डाउट मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, परंतु टेक्नोलॉजी एक मशीन है, मशीन का बदलाव इमोशन से नहीं हो सकता, मशीन में इमोशन नहीं हो सकता, आत्मीयता नहीं हो सकती। मशीन तो एक तरीके से काम करेगी, व्यक्ति को सीख के समझ के आया, उसको कुछ पढ़ा दिया, वो वैसे काम करेगा, परंतु समय पर हालत बदल गए और मशीन में बदल नहीं होगा, परंतु अपने विवेक से अपनी समझ से व्यक्ति बदलेगा। मैं इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता। भारत के युवा के मन का दृढ़ संकल्प, हर जब कोई एक काम बंद होता है 10 नए दरवाजे खुलते हैं, खुलेंगे, जिनकी जरूरत समाज में है। तो इसलिए उसके मन में ये संकल्प ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से, प्रामाणिकता से काम करना रहेगा, तो अपने आप उस प्रकार के अवसर उसको समय समय पर प्राप्त रहेंगे। समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें चलती हैं जो होती रहेंगी।
1: निश्चित रूप से तकनीकें आएंगी, लेकिन तकनीकों के अनुसार अपने आप को कुशलता प्राप्त करने की जरूरत है। हर कोई उस तकनीक में अपने आप को अगर एक जानकारी रूप में उसको स्वीकार कर ले, तो निश्चित रूप से चुनौतियां जो आज दिख रही हैं वो कल अवसर बन जाएगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनौतियों को फेस करने की जरूरत है, आपदा में भी अवसर है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे स्थानीय तकनीक हो, स्थानीय उद्योग हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, और हम रोजगार लेने वाले न बने बल्कि रोजगार देने वाले बने। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि उद्योगों को, युवाओं को या व्यक्ति विशेष को, चाहे उद्योग से जुड़े हों चाहे अन्य क्षेत्र से जुड़े हों, उनको समाज में किस तरह का सार्थक योगदान देना चाहिए या वो दे सकते हैं?
0: देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में मूल्यों का बड़ा महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में उद्योग में भी ये ठीक है, निश्चित रूप में कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ लाभ मिलना चाहिए। मैं जब छोटा था, आज से 60 वर्ष पूर्व, हमारे पिताजी हमें बोलते थे, भारत के उद्योग की सोच लूट नहीं है, पारिवारिक भाव है। वो बोलते थे हमारा प्रॉफिट कितना चाहिए, 1 रुपया लाभ है मेरे भैया।
1: अच्छा,
0: 16 आने का 1 रुपया था।
1: हाँ हाँ।
0: एक आना 1 रुपए के पीछे लाभ होना चाहिए।

0: ये कितने परसेंट हुआ? लगभग 6%। 6% में अपने माल को बेचो। आज हम देखते हैं कई बार मल्टीनेशनल ब्रांड के हमारे आज का युवा स्वदेशी ना पहनकर उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट जिसके ऊपर एक ब्रांड नाम लगा हुआ है, वो लगते ही 1000 की टी शर्ट 20000 में बेचता है। ये लूट है। भारत का दृष्टिकोण पूरे विश्व को मानव मूल्य के आधार पर एक परिवार के रूप में देखता है, व्यापार के रूप में नहीं देखता। हमारा हाथ दूसरे की जेब में नहीं है, तो हम केवल समाज को और विश्व को शांति और भाईचारे का, आत्मीयता का एक संदेश देना हमारा देश है।
1: श्री पवन जिंदल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने शिक्षा और उद्योग के बीच में तालमेल, आपने नए जो तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और युवाओं को किस तरह से अपना एप्टीट्यूड और स्किल उनमें बदलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, और खास करके आपने उद्यमिता के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेवारी की दिशा में किस तरह से हमारे देश के लोगों को सक्षम होना चाहिए और समर्पित भी होना चाहिए, इन सब बातों पर उदाहरण सहित विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका,
4: अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे उद्योग पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और आइए अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है पंजाबी कार्यक्रम का, मिट्टी दी महक। तो आइए सुनते हैं ये प्रोग्राम।

0: बारगाह रसूल अकरम में हदिया नात पेश कर रही थी सादिया अफरोज। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है। शुरुआत करते हैं 1854 में। आज ही के दिन भारत में डाक व्यवस्था के इतिहास का एक अहम अध्याय शुरू हुआ। इसी दिन देशभर में मान्य पहला आधिकारिक डाक टिकट बिक्री के लिए जारी किया गया, जिस पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छिपी थी। इससे पहले 1852 में सिंध क्षेत्र में सिंध डाक नाम से एक स्थानीय टिकट चलता था, लेकिन 1854 का यह टिकट पूरे देश में एक समान डाक व्यवस्था लागू करने वाला पहला कदम था। और 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके आंध्र राज्य का गठन किया गया था। और 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। और 1971 में पहला ब्रेन स्कैन, जिसमें एक्सरे कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी या सीईटी स्कैन का इस्तेमाल किया गया था, ये लंदन के विम्बलडन में किया गया था। और 2002 में आज ही के दिन एशियाड खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और श्रोताओं, अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करने का है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। शुरुआत करते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली से। आज चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चल रहा था। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने सैनिकों के साथ गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल कर दंडित किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसी महिला भी थी जिनका जन्म भारत में नहीं बल्कि लंदन में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। ये थी एनी बेसेंट, जिनका जन्म आज ही के दिन 1847 को हुआ। वे समाज सुधारक, लेखिका, शिक्षाविद और थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख हस्तियों में थी। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे बढ़ते हैं, उर्दू शायरी की दुनिया से हिंदी सिनेमा के गीतों तक का सफर तय करने वाले मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आज ही के दिन 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। मजरू ने लगभग 6 दशकों के अपने लंबे फिल्मी सफर में 2000 से अधिक गीत लिखे और कई पीढ़ियों के संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बनाई। शाहजहां, अंदाज, आराधना, तीसरी मंजिल, यादों की बारात और कयामत से कयामत तक जैसे फिल्मों के गीत उनके लंबे और विविध रचनात्मक सफर का हिस्सा रहे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें 1965 में फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार भी मिला था। और 1993 में वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार बने। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी उन्हें मिले थे, लेकिन आपको अब सुनाते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा एक खूबसूरत गीत, रुक जाना नहीं।

लोकगीतों की मिठास और छठ की आस्था, इन तीनों का जिक्र हो और शारदा सिन्हा की आवाज याद न आए ऐसा शायद ही हो सकता है। बिहार के सुपौल जिले में जन्मी शारदा सिन्हा को प्यार से बिहार कोकिला कहा गया। विवाह गीतों और सोहर से लेकर छठ गीतों तक उनकी आवाज ने लोक संगीत को घर घर पहुंचाया। उन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। वैसे तो उनके कई छठ गीत आज भी पर्व की पहचान बन चुके हैं। उनकी आवाज में छठ सिर्फ एक गीत नहीं लगता, उसमें घर लौटने की खुशबू, घाट की रौनक, परिवार की याद और

0: And of course, Vaishnavi, time now to pay tributes to the great music director and singer Sachin Dev S.D. Barman.
1: बिल्कुल, त्रिपुरा के राज परिवार से आने वाले बर्मन ने बंगाली लोक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ को अपनी विशिष्ट संगीत शैली का आधार बनाया और आगे बढ़ने से पहले आपको उनका

आकाशवाणी है। अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सदसारा तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहली इलाकों में मादनियाती वसायल को बरुए कार लाने की खातिर आज साहली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजिन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मचार को हकीकी हीरो करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे, जहां मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। यह प्रोग्राम साल भर जारी रहने वाली उन तकरीबात के अख्ताम की अलामत होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद में शुरू हुई थी। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूपीएससी का सदसाला यादगारी सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया उन्वान से एक किताब का इजरा करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे, जिनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन, भारतीय हुकूमत के सीनियर हुक्काम, माहिरीन तालीम, यूपीएससी के हुक्काम और दीगर शामिल हैं। यह तकरीब यूपीएससी की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली 2 रोजा तकरीब का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन का इनेकाद किया गया था। मुमताज मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब किया, जिसके बाद मुख्तलिफ मौजूआत पर पैनल मुबाहसे हुए। इक्तसादी उमूर से मुतल्लिक काबीना कमेटी सीसीईए ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की

0: इनमें से एक वजह लोगों के दिलों में पैदा होने वाली लालच और जखीरा अंदोजी का रुझान भी था, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं अच्छा खुदबनी की किल्लत न पड़ जाए और उन्हें उनकी जरूरत का गेहूं मैसर न आए। बाबा नानक देव जी ने अपने रफीक सफर भाई मर्दाना को राजस्थान के जंगल में सिर्फ 3 बेर खाने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी झोली में कुछ मजीद बेर तोड़कर रख लिए और जब इन बेरों को खाया तो उनके पेट में शदीद दर्द हुआ। बाबा नानक को जब पता चला तो आपने अपनी एक वाणी में लालच की शदीद मरम्मत की और इस अंग की तालीम दी कि खुदा के हर बंदे को इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए कि जिसने उसे पैदा किया है वो उसकी जरूरतें भी पूरी करेगा। हज़रत अली करम अल्लाह वजो का मशहूर कौल है कि रिस्क 2 तरह के हैं, एक तालिब दूसरे मतलूब। जो शख्स दुनिया को तलब करता है उसे मौत ढूंढती है, यहां तक कि वह यहां से निकल जाता है, और जो शख्स आखिरत को ढूंढता है और दुनिया की लालच नहीं करता उसे खुद दुनिया तलाश करती है, यहां तक कि उसकी रोजी उसे नसीब हो जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे अकवाल जरी का प्रोग्राम शम्मी फरोजा। आज का मौजू था लालच। पेश कर रहे थे इकबाल वारसी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। चंद्रकांत गंधर्व की आवाज में आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश, समाज फरमाइए नक्श लैलपुरी और बहादुर शाह जफर का कलाम। बाद जां आप सुनेंगे चरणजीत कौर से दाग दहलवी और मिर्जा खालिद का कलाम।

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب پیش ہے پروگرام چرچا کا وشے ہے.
1: आकाशवाणी है चर्चा का विषय है. कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी.
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है. इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं. मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी. आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है.
3: नमस्कार.
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी SIR की पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत ऊहापोह है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है.
3: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है. तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं. तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है. और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था. उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर्याय है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं. तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है. और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं. और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं. तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडम्बना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है. और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल है, चाहे BLO हो ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है. और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है, और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गाँव हिसाब से दिखाया गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है. और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है. ये तो डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्र लेकर आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है. लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है, या एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है. तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है, वोटर से जरूरत होता है.
2: बिल्कुल
3: क्यों नहीं करें हम
2: कहा. और देखिए, मैं भी दिल्ली का मतदाता हूँ और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 मतदाता, और 4 को नोटिस आया है. तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, ये सवाल अशोक जी से है और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
4: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूं। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था, तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। फिर तीन सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूं। जब बलराज मधोप उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए, जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन बीच में आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूं कि चुनाव आयोग जो है, जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस भ्रष्ट भूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। और सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकीपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
2: जी।
4: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने, यदि कभी भी चुपी मेरी पटवी मेरी। तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है, विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
2: बिल्कुल।
4: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है उसमें विपक्षी एकता

0: प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्ष दल नहीं आए हैं। कभी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं, और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अच्छा जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी है कर्मचारी है चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया, और ECINET नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बताऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा से बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं AERO असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं उनका काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है उसका जो दाखला करने की जो उपाय है तरीके है और कानून अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 मिनट पहले जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया उनका स्पष्टीकरण दिया है, बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है, फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि कोई इलेक्ट्रल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला, तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया। दूसरी बात, राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा, ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है वो, जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व तो बनता है, ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन ही हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ ऐसे नहीं कि कोई

0: रेजिस्टेंस पॉइंट बना के बैठे हैं, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है। जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, डिफेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए उनका तकलीफ दूर करने के लिए फर्स्ट स्टेप भी लिया है और ऐसे भी लेना चाहिए। ये बात नहीं की, ये उनका दायित्व है।
1: इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ कैसे जो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना या फिर उनके पूरे एसेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही है और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर भट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: तो लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। पर मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है, अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मतपेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं। लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, न कि चुनाव आयोग में गलतियां निकाले और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको

0: रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट लेने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें है खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हम। अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट दें, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, न कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें, और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो ये एक मुद्दा है। लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, ये जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस, हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोकने सीखने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा एसआईआर का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं, और इससे बचना चाहिए देश को।
1: एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट में जो फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। एसआईआर को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन, और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ये तो है आर्टिकल 326 में, उन सबका नाम इसमें होना चाहिए। और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए, मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोला, जैसा यार नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था, उसमें भी करना क्या आवश्यक है, लेकिन थोड़ा एसआईआर जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है या हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है, क्यों? एक बेस थोड़ी से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और एसआईआर में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है, अभी इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था, ये एसआईआर का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए, कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा। इसलिए शायद उन्होंने वो भी बोला कि नहीं, एक तो एक ही फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं, हम और एसआईआर के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी शायद पिछले हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और

0: कांग्रेस का जो 18 साल का हो चुके हैं,
1: तो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, एन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को, जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा, उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें SIR में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज जोड़ने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शन होगा। लेकिन आप SIR को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और SIR के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप Article 324 पर जाए क्या बोलता है? वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। Article 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट एंड डायरेक्शन रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन ही किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है। पिटीशन देने का लेवल्स ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं तो आप DO के पास जा सकते हैं, CO के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है। अगर एक जो वैध आदमी, जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है, उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, और जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसका आदेश है, ना इसका किसी मंशा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में ऐसी स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। और बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो सार्क आजकल देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
2: मैं इसी जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, उनके बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता कोई क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न के मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आग रहता है चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी वो कर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टोरल में स्थान नहीं होना चाहिए।
0: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
2: नहीं, मैं समझता हूँ कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, इसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
0: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का।

0: विषय है जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप News on AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए नगमे। आज है उनका यौम पैदाइश। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस खराज अकीदत पेश कर रही है इस नगमा निगार को।

यह नगमा था फिल्म माया से, आवाज थी मोहम्मद रफी की। अगली पेशकश मुकेश की आवाज में है साथी फिल्म का नगमा।

ट्वेल्व ओ क्लॉक फिल्म का नगमा अभी आपने गीता दत्त की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में है, फिल्म है मेरे सनम।

मेरे सनम फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म का नाम है अदालत। फिल्म है दस्तक।

लता मंगेशकर के गए हुए इस गजल के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज अपने मजरूह के लिखे हुए नगमे सुने। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए अब्दुल रहीम खाने खाना पर ये फीचर रहीमन धागा प्रेम का। तहरीर डॉक्टर अर्जुमंद आरा की है।

0: स्थित, उसका एक सबूत ये है कि एक कोई पंडित गरीब तुलसीदास से गया कुछ मांगने कि हमारी बेटी की शादी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ दे दीजिए। तो उनके पास भी क्या था, साधु आदमी, लेकिन वो जानते थे कि रहीम किसी को अपने यहाँ जो मांगने आता था उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। तो तुलसीदास ने आधा दोहा लिखा, लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय, माने देवताओं की स्त्रियां, मनुष्यों की स्त्रियां और नागों की स्त्रियां भी यह चाहती हैं। उसके बाद से आधा दोहा छोड़ दिया। उस पंडित को कहा कि यह लेकर तुम रहीम के पास जाओ। रहीम ने वह पढ़ा और रहीम ने जो दोहे की पूर्ति की वो अद्भुत है। रहीम ने उसमें जोड़ा, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो, माने वो औरतें चाहती ये हैं कि हमारा बेटा तुलसी की तरह हो, उसको लेकर वो प्रसन्न खुश होकर वो घूमती। अब इसमें एक बड़ी भारी बात ये है कि हुलसी शब्द का दोनों मतलब है। हुलसी का कुछ लोगों ने उसको संज्ञा माने नाउन बना दी और कहा ये कि ये तुलसीदास की माँ का नाम। अब आज तक हिंदी साहित्य के इतिहासों में और किताबों में तुलसीदास का की माँ का नाम हुलसी ही चलता है, पर प्रमाण उसका कोई नहीं है रहीम के उस दोहे के अलावा। वो हिंदी के छंदों के मास्टर थे रहीम, एक छंद के नहीं, माने जिसके मास्टर थे दोहे के उसके अलावे बरवे के मास्टर भी। तो उनका बरवे में एक ग्रंथ है लिखा हुआ, वो ले जाके किसी ने तुलसीदास को दिखाया तो इतने प्रसन्न हुए कि उसके देखा देखी स्वयं बरवे में अपनी कविता लिखी उन्होंने। इसलिए रहीम का लोक जीवन पर ही नहीं तुलसीदास जैसे बड़े कवि पर भी असर पड़ा, इससे ज्यादा बड़ी बात कोई किसी के बारे में हो नहीं सकती। उनका जो काव्य है वह साहित्य की अमूल्य निधि है, ऐसी कविता है शायरी है वो जिसकी तुलना कबीरदास तुलसीदास आगे के दिनों में नजीर अकबराबादी आदि से ही की जा सकती है, साधारण कवियों से नहीं।
1: उनकी शायरी का सफर आग से गुजरने का सफर है जिसमें कई पड़ाव हैं। पहले पड़ाव की शायरी में नल का भेद और नगर शोभा दो अहम तख्लीकात हैं। नल का भेद में इश्क के मुख्तलिफ पहलुओं और कैफियतों का बयान है, सजना सवरना चाहत लगन छल कपट हसद इंतजार राग रंग और दिल की ना तमाम हसरतें। नगर शोभा में मुख्तलिफ इलाकों तबकों और जात बिरादरियों की औरतों की तस्वीर कशी है। बंजारी झूमत चलत जहरी पहरे पाए वाके जहरी के सबद विरहे जयहर जाए,
2: यानी पाँव में झांझर पहने बंजारी चली जा रही है, झांझर की आवाज से वो मजदूरों के दिल अपने बस में कर लेती है। इसके बाद रहीम की शायरी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है जिसमें जिंदगी के तल्खोशीन तजुर्बात और दिनों के उलट फेर का बयान है। गहरे मुशाहदे और तजर्बों पर मबनी इस शायरी को नीति काव्य यानी अखलाकी शायरी कहा जाता है। यह शायरी उन्होंने दोहों और सोठों के रूप में की है। नीति काव्य में रहीम को वो मकाम हासिल है जिसके सामने उनकी बकिया तख्लीकात का रंग फीका पड़ गया है।
1: नीति काव्य के ताल्लुक से मारूफ अदीब जनाब जानकी प्रसाद शर्मा कहते हैं कि रहीम बेदार करते थे समाज में रहकर अमल के जरिए।
3: रहीम को नीति का बहुत बड़ा शायर माना जाता है। नीति ये अंग्रेजी के पॉलिसी के मानी में नहीं है, नीति अखलाक के मानी में, अखलाक की शायरी करने के माने ये है कि देखिए बहुत बड़ी बात है, गहराई से आप देखिए कि दरअसल ये अखलाक की जरूरत तो सबको है, हर इंसान के लिए है। रंग

0: अब्दुल रहीम खान खाना पर ये फीचर अभी आपने सुना, रहीमन धागा प्रेम का, तहरीर डॉक्टर अर्जुमंद आरा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौलैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सऊदी अरब के हुक्काम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार को हकीकी हीरो करार दिया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के साथ बाहमी तौर पर मुफीद तिजारती समझौते तक पहुंचने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीव से मुलाकात की। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने मर्दों के स्कीफ मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब के हुक्काम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उसको पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की। ओमान के को पायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला किया। 2 मिनट में यह तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। ताहम मुसाफिरों और अमले के अरकान ने कोकपिट में घुसकर हमलावर पर काबू पा लिया और जहाज के इस्तेकाम में मदद की। उसके बाद परवाज के रास्ते में तब्दीली करके उसे सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाकई तबूक इलाकाई हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतारा गया। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल काज ने इसे सिक्योरिटी से मुतालिक संगीन वाकया और एक मुश्तबा दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। इसराइल के वजीर आजम ने कैप्टन स्मिथ मच्छार जो एक भारतीय शहरी हैं उन्हें सच्चा हीरो करार दिया जिन्होंने इसराइल जाने वाली परवाज में सवार 174 लोगों की जान बचाई। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने गैर मामूली दिलेरी का मुजाहरा करते हुए एक बड़े सानहे को रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ मच्छार की सताइश की और उन्हें एक बहादुर हीरो करार दिया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने की खातिर दिलेरी हिम्मत और पुख्ता अज़्म का मुजाहरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि कैप्टन मच्छार की बहादुरी की बदौलत सैकड़ों अफराद की जान बचाने और एक बड़ा सानहा टालने में मदद मिली। वजीर आजम ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार एक हीरो हैं और भारत को उन पर फख्र है। जनाब मोदी ने उनकी जल्द सेहतयाबी, नई कुव्वत और तंदुरुस्ती की दुआ की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने फ्लाई दुबई परवास के वाकये के दौरान भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार की गैर मामूली दिलेरी और काबिल कदर होशियारी और मुस्तैदी के लिए उनकी सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि संगीन खतरे के हालात में भारतीय कैप्टन ने बहुत से अफराद की जान बचाई और एक बड़ा सानहा टाल दिया। इधर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया है कि कैप्टन स्मिथ मच्छार महफूज हैं और उनका इलाज हो रहा है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मुल्क को उन पर और उनकी फैमिली पर फख्र है। कानों के महकमे की वजारत आज साहिली इलाकों के मादिन

ट्रेड मिनिस्ट्रियल के मौके पर अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की, जो कि भारत और अमरीका की जानिब एक मुतवाजन और बाहमी तौर पर फायदेमंद तिजारती मुआहदे तक पहुंचने की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका के उनके दौरे से कबल वजारत तिजारत ने कहा था कि जनाब गोयल दो तरफा तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जेमिसन ग्रीर के साथ तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने कल उस वक्त मुलाकात की जब वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत की, ताकि तिजारत, दिफा, तवानाई, अहम टेक्नोलॉजीज और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में दो तरफा तआवुन में पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। पीर को एक बयान में वजारत तिजारत ने कहा था कि जनाब गोयल अपने अमरीकी हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, जो भारत अमरीका के मुतवाजन और बाहमी तौर पर फायदेमंद दो तरफा तिजारती मुआहदे बीटीए के आगे बढ़ाने और 7 फरवरी 2026 के मुश्तरका बयान के ऐन मुताबिक उबूरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। भारत और अमरीका ने फरवरी में दो तरफा तिजारती मुआहदे बीटीए के पहले मरहले के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया था। ताहम अमरीका में टैरिफ के मंजरनामे में तब्दीलियों की वजह से मुआहदे पर मजीद बातचीत शुरू हुई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीकी फौजियों का आखिरी दस्ता भी इराक से बाहर निकल रहा है। इस तरह ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व बाजाब्ता तौर पर खत्म हो रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजियों की वापसी को आईएसआईएस पर फैसलाकुन कामयाबी करार दिया और कहा कि इससे अमरीका के साथ साथ इराक की फतह की भी अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह इराक में दो दहाइयों से ज्यादा अरसे से जारी अमरीकी फौज की मौजूदगी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। रूस ने कल यूक्रेन के तवानाई के निजाम को निशाना बनाकर किए गए बड़े हमले में कीव और कई दीगर इलाकों में बिजली से मुतालिक तंसीबात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेन के हुक्काम का कहना है कि रूस के इन फजाई हमलों में उसके 7 लोग हलाक हुए हैं। कीव और उसके 3 नवाही इलाकों में हंगामी तौर पर बिजली की फराहमी को रोक दिया गया। मौसम बहार के बाद से राजधानी कीव में पहली बार इस तरह के अहकाम नाफिज किए गए। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने मजीद तमगे जीतने की उम्मीद के साथ आज इन खेलों के 12वें दिन का आगाज किया। भारत को आज का पहला तमगा मर्दों के स्कीफ मुकाबले में मिला। भारत के मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने चांदी का तमगा जीता। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा हासिल किया। फ्रांसिस और नोबल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमू तौर पर 23 प्वाइंट हासिल किये। स्क्वाश में भारत को खवातीन के टीम मुकाबले में कांसे का तमगा मिला। भारतीय टीम सेमीफाइनल में हांगकांग से 2-1 से हार गई। इधर सेपक टोक्रोक के मुकाबले में भारत के मर्दों के जुमरे में वियतनाम को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मर्दों की हॉकी में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होने वाला है। दूसरी तरफ खवातीन हॉकी में भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला चीन से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए, जो एक रोजा क्रिकेट मैचों में उसका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने 43 ओवर्स और 3 गेंदों में महज 2 विकेट खोकर जीत का निशाना आसानी से हासिल कर लिया। शुभमन गिल को उनकी शानदार कारकर्दगी की बिना पर बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सऊदी अरब के हुक्काम ने दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मित मछार को हकीकी हीरो करार दिया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूएकार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के साथ बाहमी तौर पर मुफीद तिजारती समझौते तक पहुंचने की

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में ये नगमा था आदमी और इंसान फिल्म से। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिली सुर मेरा तुम्हारा। यहां एक अहम मालूमात आपसे शेयर करना चाहेंगे। आज रात 10 बजे हजरत निजामुद्दीन औलिया के 723वें उर्से मुबारक की तकरीबात का बराह रास्त अहवाल उर्दू सर्विस नशर करेगी बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली से। तो सुनना ना भूलिएगा लाइव कमेंट्री हजरत निजामुद्दीन औलिया के उर्से मुबारक के हवाले से रात को 10 बजे। और अब आ जाते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के बाकी नगमों पर। लेकिन हाँ, एक चीज और भी बताते चले कि चूंकि उर्से मुबारक की तकरीबात चल रही हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया बस्ती हजरत निजामुद्दीन में, तो आज दिन में 3:30 पर भी हम एक फीचर नशर करेंगे जिसका मौजू है हजरत निजामुद्दीन औलिया और तहरीर है डॉक्टर निसार अहमद फारूकी की। तो 3:30 पर यह फीचर सुनना ना भूलिएगा। प्रोग्राम की अगली पेशकश पर आ जाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आन बान फिल्म का नगमा।

लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में था ये नगमा राजा रानी फिल्म से। बीच बीच में कहीं आपको राजेश खन्ना साहब की आवाज भी सुनाई दी होगी। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है, फिल्म है अनुराग।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है?

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा था दीवार फिल्म से। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नगमा सुनिए, आवाजें महेंद्र कपूर आशा भोसले और लता मंगेशकर की हैं।

0: फिल्मी दुगाने आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से नशर हो रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही।
1: दिल्ली को 22 ख्वाजाओं की चौखट कहा जाता है। अलबत्ता ख्वाजगान दिल्ली में जो शोहरत और मकबूलियत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया को मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। आज भी दिल्ली में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा कसरत से बोला लिखा और पढ़ा जाता है तो वो हजरत महबूब इलाही का नाम है। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हकीकी मानों में सूफी बासफा थे। अल खल्को आलुल्लाह के उसूल पर अमल करते हुए जो कुछ भी उनके पास आता मखलूक पर खर्च कर देते। बादशाहों और शहजादों के हदीये कबूल करने से गुरेज करते। अपने पीरो मुर्शिद की नसीहत पर अमल करते हुए मुखालिफों के साथ भी हुस्ने सलूक का रवैया इख्तियार करते, यहाँ तक के वो भी उनके गिरविदा हो जाते। अपने मुरीदीन के साथ शफकत और मोहब्बत का मुआमला फरमाते और हर वक्त उनके अहवाल की इसलाह के लिए फिक्रमंद रहा करते। इसी तरह अपने पीरो मुर्शिद के अजीजों और उनके मुरीदों का भी खास ख्याल रखते। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ही नहीं महबूब आम व खास भी थे। उनकी मजलिस में सबको बिला तफरीक और बगैर किसी पाबंदी के रसाई हासिल थी। खल्क़े खुदा इस कसरत से उनके दरबार में हाजिरी देती कि बादशाहों के दरबारों की रौनक मान पड़ जाती। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोजशाही में उनके बारे में लिखा है, शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन औलिया ने बैत आम का दरवाजा खोल रखा था और गुनाहगारों को खिरका पहुंचाते और उनसे तौबा कराते थे और अपनी मुरीदी में कबूल करते थे और खास व आम गरीब व दौलतमंद बादशाह व फकीर आलिम व जाहिल शरीफ व रदील शहरी और देहाती गाजी व मुजाहिद आजाद व गुलाम सबको तज़किए तौबा और पाकी की तालीम देते थे। और ये तमाम लोग चूंकि अपने को शेख का मुरीद समझते थे बहुत से गुनाहों से बाज आते थे और अगर किसी मुरीद से लग्जिश हो जाती तो फिर असरे नो बयात करता और शेख उसको तौबा का खिरका अता करते। शेख की मुरीदी की शर्म तमाम लोगों को बहुत सी जाहिरी और बातनी बुराइयों से रोके रखती थी। आम तौर पर लोग तकलीद और एतकाद की वजह से इबादत की तरफ रगबत करते थे। मर्द औरत बूढ़े जवान बाजारी आमी गुलाम नौकर सबके सब नमाज अदा करते थे और हजरत के अक्सर मुरीद चाश्त तो इशराक तक के पाबंद हो गए थे। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने इस उलूही और अवामी मकबूलियत के दरमियान वहदत इलाह और वहदत आदम के आफाकी इस्लामी पैगाम को अपनी जातो हयात का मरकज व महवर करार दिया और एक ऐसी समाजी और तहजीबी हरकत पैदा की जिससे रूहानी तिश्नगी के मारे हुए लोग जूख दर जूख गयासपुर के चश्मे

प्रेम दीवाने फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ। अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

0: इस है, अब आलमी खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप असदुल्ला से आलमी खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। सऊदी अरब के हुक्काम ने दुबई से तल अवीव जाने वाली फलाई दुबई प्रवास के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश नाकाम करने के बिना पर उम्मान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मित मच्छर को हकीकी हीरो करार दिया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के साथ बाहमी तौर पर मुफीद तिजारती समझौते तक पहुंचने की कोशिशों के तौर पर अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जैस्मिन गिर से मुलाकात की। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने मर्दों के स्किफ मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब के हुक्काम ने उम्मान से ताल्लुक रखने वाले उस को पायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तल अबीब जाने वाली फलाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर जख्मी करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की। उमान के को पायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। 2 मिनट में यह तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया, तहम मुसाफिरों और अमले के अरकान ने कॉकपिट में घुसकर हमला आवर पर काबू पा लिया और जहाज के इस्तेहकाम में मदद की। इसके बाद परवाज के रास्ते में तब्दीली करके उसे सऊदी अरब के शुमाल मगरब में वाक तबूक इलाकाई हवाई अड्डे पर बहफाजत उतारा गया। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल काज ने इसे सिक्योरिटी से मुतालिक संगीन वाकया और एक मुश्तबा दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। इसराइल के वजीर आजम ने कैप्टन स्मित मच्छर, जो एक भारतीय शहरी हैं, को सच्चा हीरो करार दिया जिन्होंने इसराइल जाने वाली परवाज में सवार 174 लोगों की जान बचाई। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छर ने गैर मामूली दिलेरी का मुजाहरा करते हुए एक बड़े सानहे को रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मित मच्छर की सताइश की और उन्हें एक बहादुर हीरो करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छर ने दूसरों की जान बचाने की खातिर दिलेरी, हिम्मत और पुख्ता अज्म का मुजाहरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि कैप्टन मच्छर की बहादुरी की बदौलत सैकड़ों अफराद की जान बचाने और एक बड़ा सानहा टालने में मदद मिली। वजीर आजम ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छर एक हीरो हैं और भारत को उन पर फख्र है। जनाब मोदी ने उनकी जल्द सेहतियाबी, नई कुवत और तंदुरुस्ती की दुआ की। वजीर खारजा डॉ ए जयशंकर ने फलाई दुबई परवाज के वाकये के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर की गैर मामूली दिलेरी और काबिल कदर होशियारी और मुस्तैदी के लिए उनकी सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि संगीन खतरे के हालात में भारतीय कैप्टन ने बहुत से अफराद की जान बचाई और एक बड़ा सानहा टाल दिया। इधर वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि कैप्टन स्मित मच्छर महफूज हैं और उनका इलाज हो रहा है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मुल्क को उन पर और उनकी फैमिली पर फख्र है। कानून के महकमे की वजारत आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। वजारत ने कहा कि साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूए कार लाने और इन वसाइल की तवील मुद्दती यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने की सम्त एक अहम कदम है। यह नीलामी अंडमान के बहरी खित्ते में साहिल समंदर 2 मादनियाती ब्लॉकों पर मुश्तमिल है जो मखलूत लाइसेंस देने के लिए होगी। वजारत ने इस बात को उजागर किया है कि उम्मीद है कि इससे मुनज्जम तलाश की हौसला अफजाई, सरमायाकारी को रागिब करने और साहिली इलाकों में मादनियात की तलाश और इनके फरोग के लिए जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी इख्तियार किए जाने को बढ़ावा मिलेगा। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने मिलवॉकी में G20 ट्रेड मिनिस्टीरियल के मौके पर अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेनिसन गिर से मुलाकात की, जो कि भारतीय और अमरीका की जानिब एक मुतवाजिन और बाहमी तौर पर फायदे

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज पर हमारी नशरिया जारी है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को हकीकी हीरो करार दिया। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरुए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के साथ बाहमी तौर पर मुफीद तिजारती समझौते तक पहुंचने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर से मुलाकात की और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म प्रेम गीत सन 1981 में बनी ये बॉलीवुड फिल्म जिसका निर्देशन किया सुदेश इस्सर ने और इस फिल्म के कलाकारों की अगर बात करें तो राज बब्बर और अनीता राज की खूबसूरत अदाकारी से सजी ये फिल्म प्रेम गीत। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इतनी इमोशनल, इतनी प्यारी कहानी है ना कि वाकई में इस फिल्म को देखते हुए ना हर कोई इंसान इस फिल्म की कहानी में डूब जाता है। और कहानी हम आपको बता देते हैं भाई, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी और अगर आपने नहीं देखी है तो कहानी सुनकर मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप ज़रूर इस फिल्म को देखने का मन करेगा आपका। फिल्म की कहानी घूमती है आकाश यानी कि राज बब्बर के इर्द गिर्द, जो कि एक मशहूर शायर हैं और अपने अलग नाम यानी कि निशांत से वो शायरी लिखते हैं। आकाश की जो शायरी है उसकी दीवानी होती है शिखा यानी कि अनीता राज, जो कि एक डांसर हैं और बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की हैं। खतों से सिलसिला शुरू होता है उन दोनों का धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी फैन होती हैं, बहुत बड़ी दीवानी होती हैं आकाश की शायरी की, और खतों से सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल जाता है और आकाश अपनी शायरी से शिखा का दिल जीत लेता है। दोनों सपने देखते हैं कि शादी में बनने का, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में तो उनके कुछ और ही मन लिखा था। कहानी में ट्विस्ट या कहें कि एक दर्दनाक मोड़ आता है जब अचानक से शिखा की तबीयत खराब होती है और जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि शिखा को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। ये बात जानने के बाद आकाश पर तो मानो मतलब एकदम से बहुत सारा दुख आकर के गिर जाता है और वो बहुत परेशान होता है, लेकिन शिखा के सामने वो सब सच्चाई नहीं आने देता है और अपने दिल में उस दर्द को छिपाकर वो शिखा की जो जिंदगी होती है पूरी तरह से उसको खुशियों और प्यार से भरने में लग जाता है। शिखा को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता कि उसकी जो सांसें हैं वो गिन कर चल रही हैं। और अंत में आता है फिल्म का आखिरी हिस्सा या कहें कि क्लाइमैक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। यहाँ पर शिखा आकाश की बाहों में दम तोड़ देती है, लेकिन उसके प्यार का गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक छोटे रूप में कहें तो जो प्रेम गीत फिल्म है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि प्यार में त्याग, समर्पण और हर पल को खुलकर जीने की एक खूबसूरत सी कहानी है। है ना बहुत ही खूबसूरत? तो लीजिए चलते हैं अगले पड़ाव पर आशा जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1981 की ये खूबसूरत सी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म प्रेम गीत। जी दोस्तों, इस फिल्म यानी कि प्रेम गीत से हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिली एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, वो अभिनेत्री अनीता राज। जी हाँ दोस्तों, अनीता राज की ये पहली फिल्म थी और इस पहली ही फिल्म में उन्होंने काम किया राज बब्बर जी के साथ में, और उनकी दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी पसंद की गई कि वो रातों रात लोगों के दिलों पर छा गई। और राज बब्बर साहब को इस फिल्म में लेने के पीछे भी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि राज बब्बर साहब ने उससे पहले सन 1980 में बीआर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया था, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। और उनकी उस फिल्म में जो एक्टिंग थी, इतनी दमदार एक्टिंग उन्होंने की थी कि इंडस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह हिला के रख दिया था। और हर निर्माता निर्देशक समझ गया था कि भाई ये जो कलाकार है, ये अभिनेता है, हर किरदार में, हर तरह के किरदार में जान फूंक सकता है। और क्योंकि जो हमारे इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनको चाहिए था कोई ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो कि उनके इस बहुत ही इमोशनल और थोड़े गहराई से जुड़े हुए किरदार में जान फूंक सके, और उस किरदार के लिए राज बब्बर से बेहतर अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता था। और यही सोचकर सुदेश इस्सर जी ने इस फिल्म में नए कॉम्बिनेशन, एक नई फ्रेश जोड़ी को लाने का फैसला किया, और बनी ये खूबसूरत जोड़ी अनीता राज और राज बब्बर साहब की। वैसे आपको बता दें कि जो अनीता राज हैं, वो अभिनेता जगदीश राज जी की बेटी हैं और उन्होंने इसी फिल्म से किया अपने फिल्मी सफर की शुरुआत। वैसे जब अनीता राज इस फिल्म में आई और उन्होंने जब पहला दिन शूटिंग का, तो वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत नर्वस थी कि राज बब्बर साहब जो कि उस वक्त में बहुत ज्यादा फेमस थे और उनकी जो आवाज थी वो जिस तरह की एक

इंटेंस आवाज उनकी थी, उसका तो उस वक्त में हर कोई दीवाना था। उनके साथ काम करते करते वो बहुत नर्वस थी, और जब इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी, एक रोमांटिक डांस सीन की, तो अनीता राजी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। और जब राजबब्बर साहब ने ये देखा कि भाई जो ये लड़की है तो बहुत बुरी तरह घबराई हुई, इस तरह से कैसे फिल्म की शूटिंग होगी, किस तरह से केमिस्ट्री दिखेगी, तो वो अनीता जी के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, मुझे समझो ही नहीं कि मैं राज बब्बर हूँ, तुम मुझे आकाश समझो जो कि तुम्हारा दोस्त है, बिल्कुल उसी की तरह, अपने एक दोस्त की तरह से मेरे साथ में काम करो। और बस फिर क्या था, अनीता राज का जो डर है वो एक चुटकी में गायब हो गया। और उसके बाद दोनों ने कितनी सहजता के साथ में एक्टिंग की और किस तरह की केमिस्ट्री उनकी पर्दे पर दिखी है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह की आवाज में।

जी दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत, क्या शब्द है ना। वाकई में जब इस फिल्म के संगीत की बात आती है ना, तो वाकई पूरी तरह से दिल में उतर जाता है, क्योंकि जो इस फिल्म के गीत हैं उनके शब्द भी पूरी तरह से हमारी रूह में उतर जाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इस फिल्म का जो संगीत है वो भारतीय सिनेमा के गजल सम्राट जगजीत सिंह जी ने बनाया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का पूरा संगीत जगजीत सिंह जी ने तैयार किया, और इसके जितने भी दिलकश गीत हैं उनको लिखा मशहूर गीतकार इंदीवर जी ने। शायरी और संगीत का एक खूबसूरत बेजोड़ तालमेल जो आज भी सुनने वाले को एकदम तरोताजा कर देता। और उस पर ये गीत जो कि अभी आपने सुना, भाई ये तो जगजीत सिंह जी की करियर का वो गीत है कि उनकी पहचान इस गीत से है। बेशक उन्होंने बहुत सी गजलें की, लेकिन ये गीत ऐसा है कि इस गीत को सुनते ही सबसे पहले जगजीत सिंह का नाम याद आता है ना। जी दोस्तों, और जब इस प्रोग्राम को करते हैं तो हमें भी याद आते हैं हमारे बहुत से श्रोता जिनके संदेश हम तक आ चुके हैं। संदेश हम शामिल कर लेते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव जगुताई, कुमार संचित, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार से जुड़े हुए हमारे साथ भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवांशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंडा टोला बालो छत्तीसगढ़ से डोमिंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और निमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। गांवना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता, गीता जुड़े हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, शिप्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांवफरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिला पश्चिम सिंह भूप चाईभासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता जी जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से। और ये अगला संदेश मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ कविता जी का है, और ये संदेश आया है राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विनोद टेलर, साहिल का गांव चौधरी वास, हरियाणा हिसार से। और ये अगला संदेश आया है हमारे पास कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से, और इसको भेजने वाले हैं संदीप, ज्योति, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़ जी का। डीबी राणा जी जुड़े हमारे साथ नेहरू विहार से, और ये अगला संदेश हम तक आया अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और नन्हे पोती अन्विका, तनुश्री गुप्ता जी का, पीहरा बाजार, झुमरी तलैया से। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पल्स और विलिस डिकैस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से। सुदर्शन मुखी अनीता जी के साथ जुड़े हैं, सिमरन मुखी उनके साथ हैं। शांतिनगर सोनीपत से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। जी दोस्तों, और अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाया है स्वर्ण सिंह जी का, एक बार फिर से संदेश है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े। और दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने बात की फिल्म प्रेम गीत के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म का नाम बिल्कुल पूरी तरह इसकी कहानी और गीतों पर सार्थक होता है, प्रेम गीत। जितने भी गीत हैं सब प्यार से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए इस कार्यक्रम की समाप्ति की, जाएगा कहीं नहीं। 2:30 पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम एक ही कलाकार, और 3 मैटिनी मेलेडीज के साथ अर्चना गोयल जी। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाम मैं सरबजीत कौर, पहले बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के शताब्दी समारोह में संबोधन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हथियारबंद फौजों में तालमेल

0: अब एकीकरण से बेहद जोर दे रही है। सरकार ने खंड डीलर भंडार रखने की म्याद घटा के 15 दिन की थी, तो भंडार रखने की सीमा 1000 क्विंटल तय की थी। केंद्रीय व्यापार के सनक मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EU आजाद व्यापार समझौते के दस्तखतकरण और लागूकरण में हुई प्रगति की समीक्षा की थी। इन चय खेडा में भारतीय कंपाउंड किरण दास, गणेश मणिरत्नम तिरहुरु ने मर्दा का व्यक्तिगत कांस्य का तमगा जितया। तो मर्दा के क्रिकेट विच भारत ने श्रीलंका को 124 रन हरा के पाकिस्तान खिलाफ फाइनल विच थां बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि UPSC के 100 साल के सफर विच पीढ़ियां, सरकारां, टेक्नोलॉजी और सिलेबस बदले ने, पर इस संस्था विच विश्वास पहला वांग ही अटूट बनिया हुआ है। आज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे संघ लोक सेवा कमीशन UPSC के शताब्दी समारोह संबोधन करदिया श्री मोदी ने नौजवानों जनतक सेवा विच लियाउण की जरूरत से जोर दिता, जो सरकारी अहुदिया तो नहीं सगो जनतक सेवा तो प्रेरित होण।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: उन्होंने कहा कि अज इक्कीवीं सदी का भारत एक नवे कारज सभ्याचार नाल अगे वध रहा है, जिसका मुख सिद्धांत लोकां पक्षी सुखावा होना, कारजशील अते सुशासन है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नगर सरकार का मंत्र नागरिक देवो भाव और नागरिकों की सेवा करना सब तो है। उन्होंने कहा कि UPSC तो राज लोक सेवा कमीशन वर्गे अदारे देश को विकसित भारत के लोड़ी प्रशासन वड्डे पद्धर से समर्थ बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि अज भर्ती किए जा रहे नौजवान विकसित भारत बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अमला लोक शिकायतों और पेंशन बारे राजमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि UPSC ने पिछले 12 साल में कई बिल पत्र हासिल किए हैं और नए पहलू जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि UPSC राही सरकारी नियुक्तियों की गिनती में वाधा हुआ है, भर्ती प्रक्रिया वधेरे पारदर्शी हो गई है, जिस नाल जनता का भरोसा वध्या है। इस समागम पिछले साल 1 अक्टूबर 1996 UPSC की स्थापना की 100वीं वरेगंढ की याद में शुरू हुए एक साल भर के जश्न के अंत को दर्शाता है। इस मौके को मनाने लिए प्रधानमंत्री मोदी ने UPSC का शताब्दी यादगार सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया सुलेख वाली एक किताब भी जारी की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हथियारबंद फौजों में तालमेल और एकीकरण से बेहद जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस से बोलदिया श्री सिंह ने कहा कि माली प्रणालियों को एकीकृत करने से समुचे रक्षा प्रबंध में सुधार होगा और इसको और भी कुशल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग पूरे रक्षा मंत्रालय को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है और रक्षा सिलसिले की रीढ़ है।
2: मैं समझता हूं कि अगर यह सिस्टम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो यह नक्सल हमारी वेटरन्स और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को भी एक नए लेवल पर यह पहुंचा देगा। और यह समय की मांग है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चुनौती को भी उसी डेडिकेशन के साथ पूरा करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने विभाग को अपील की थी कि वह अपने प्रक्रियाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता ऑडिटिंग के सब तो वधिया ढंग तरीकों में अपनाए और शामिल करे और देश की दुनिया भर में बदलते मापदंडों नाल तालमेल रखे। श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग की अहमियत पर भी जोर दिया।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, ये सब टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में रिवोल्यूशन ला रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी इन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन की मदद से हम ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं।
0: रक्षा मंत्रालय

मिलिट्री नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस से उन्होंने नर्सिंग मुलाजमान को श्रद्धांजलि भेंट की, जो एक सदी तो वध समय तो समर्पण हमदर्दी और सेवा की भावना में बहादुर फौजियों और उन्होंने परिवार की देखभाल करने अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुस्कुराहट के साथ सेवा की भावना से समर्पित मुलाजम सेवा संभाल के क्षेत्र में अपने अटूट योगदान राही सेवा और मनुखता की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। सरकार ने खंड डीलर लिए भंडार रखने की म्याद घटा के 15 दिन कर दी है। भंडार रखने की सीमा 1000 क्विंटल तय की है, जो इस महीने के 15 तारीख तो लागू होगी। इस साल नवंबर तक लागू रहेगी। खपतकार मामलों बारे मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने त्योहारों के समय दौरान जमाखोरी को रोकने खपतकारों को सुचारू सप्लाई यकीनी बनाने लिए खंड भंडार रखने के नियमों में सोधा है। मंत्रालय ने भी कहा कि औसत पेट्रोल खंड की कीमत अगस्त से 15% घट गई है और होर भी घटने की उम्मीद है। मिल की प्रक्रिया तो बाद दिया खंड दी कीमतों में भी करीब 28% की गिरावट आई है और पिछले 3 हफ्तों दौरान स्थिर रही ने। यह खबर आकाशवाणी को सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @AIRNewsLondon। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुदरत के संतुलन को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कीमती विरासत को सुरक्षित रखने लिए जंगलों और जंगली जीवों की रक्षा करना जरूरी है। जंगली जीव हफ्ते 2026 के मौके पर अपने संदेश में श्री मोदी ने नागरिकों को जंगली जीवों और उनके निवास स्थानों की रक्षा में योगदान पाने की अपील की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया से चल रहा एक गजट नोटिफिकेशन, जिस विच दावा किया गया कि सारे शनिचरवारों को जनतक खेतों के बैंकों ने जनतक छुट्टियां ऐलानियां गई ने झूठा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य साफ इकाई ने कहा है कि केंद्रीय खजाना मंत्रालय वालों अजिही कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ब्राजील के भारत मोरखुसुम अपने मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते पीटीए अगे बढ़ रहे ने। मोरखुसुम दक्षिण अमरीकी देशों का एक व्यापारक समूह है, जिस विच ब्राजील और होर दक्षिणी अमरीकी आर्थिक धावा शामिल ने। ब्राजील के विकास सनत व्यापार सेवावान मंत्री मार्शियो एलियस रोजा ने कहा कि मौजूदा समझौता सिर्फ 450 टैरिफ लाइनों कवर करता है, बेहद सीमित है। अमरीका के जीवी व्यापार मंत्रियों की मीटिंग दौरान भारतीय व्यापार सनत मंत्री पीयूष गोयल नाल मुलाकात के बाद श्री रोजा ने कहा कि दोवां धिरां ने व्यापक गलबात लई इक ढांचे नूं अंतिम रूप दे दित्ता। उन्होंने कहा कि दोवां धिरां नूं व्यापार समझौते के प्रसार लई ठोस तजवीज विकसित करने विच मदद करेगा। केंद्रीय व्यापार तो सनत मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आजाद व्यापार समझौते के दस्तखत करने और लागू करने वाल हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अमरीका के जीवी व्यापार मंत्रियों की मीटिंग के मौके पर व्यापार से आर्थिक सुरक्षा में यूरोपियन कमिश्नर मारोस सेफकोविच नाल गलबात की। दोवां धिरां ने भारतीय व्यापार टेक्नोलॉजी कौंसल WTO सुधार और जीवी विच सांझियां तरजीहां से भी विचार वटांदरा किया। भारतीय कंपाउंड तीरअंदाज गणेश मणि रत्नाकर चिरुगुरू ने आज एशियाई खेडा विच मर्दा का व्यक्तिगत कांसी का तमगा जितया। स्क्वैश विच भारतीय औरतों की टीम ने सैमीफाइनल विच हांगकांग तो 1-2 नाल हारन तो बाद कांसी के तमगे नाल सबर करना पिया। इस दौरान सेपाक्राव विच भारत के मर्दा के क्वाड्रेंट मुकाबले विच वियतनाम ने 2-0 नाल हरा के सैमीफाइनल विच प्रवेश करके घट्टो घट 1 कांसी का तमगा पक्का कर लिया है। इस दौरान मर्दा की क्रिकेट विच भारत ने श्रीलंका नू 124 रन नाल हरा के पाकिस्तान खिलाफ फाइनल विच थां बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के शताब्दी समारोह में संबोधन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हथियार पर पहुंचा विच तालमेल और एकीकरण पर बेहद जोर दे रही है। सरकार ने खंड डीलर लिए भंडार रखने की म्याद घटा के 15 दिन की भंडार रखने की सीमा 1000 क्विंटल तय की है। केंद्रीय व्यापार के सनत मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यू आजाद व्यापार समझौते के दस्तखत करने और लागू करने वाल हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6 बजे दिन होगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज, पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की।

0: ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिना रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसाइल को मुअस्सर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वजराए तिजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए हैं और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के 100 साल के सफर के दौरान नस्लें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और निसाब तब्दील हुए हैं, लेकिन इस इदारे पर लोगों का एतमाद आज भी उसी तरह कायम है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में UPSC की 100 साल तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजिमत इख्तियार करें।
1: हम ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न पढ़े कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है जिसका बुनियादी उसूल अवाम दोस्त, निहायत सरगर्म और बेहतर हुक्मरानी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स लेने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देवो भवा, यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है उसे बड़ी हद तक UPSC और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि UPSC ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संगे मील तय किए हैं और इसमें कई नए पहलू शामिल हुए। उन्होंने कहा कि UPSC के जरिए की जाने वाली सरकारी तकदीरों में इजाफा हुआ है जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। UPSC के चेयरपर्सन डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और UPSC ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही परखा जाए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने UPSC के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्रर की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये नवंबर तक नाफिज रहेगी। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिना रूकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ला अफवाज को मरबूत करने पर मखसूस तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर मुआशी निजाम को भी मरबूत कर दिया जाए तो इससे पूरा दिफाई इंतजाम और भी मुअसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और ये दिफाई निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मियारी ऑडिटिंग

0: location and other needs in a matter of hours. Previously, a to and fro journey would take up to 2 days. With Harendranath Sharma from Dhemaji, Rakesh Tole, Akashvani News, Guwahati.
1: An important meeting is being held in New Delhi today under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah to resolve the long-pending Mahanadi water dispute between Chhattisgarh and Odisha. More from our correspondent.
2: The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. After talks failed to resolve the issue, the Mahanadi Water Disputes Tribunal was constituted in March 2018. Odisha says that water projects being built in the upper reaches of the Mahanadi in Chhattisgarh affect the flow of water to Odisha during the non-monsoon season. Chhattisgarh, on the other hand, has maintained that it needs to use its share of water for irrigation, industrial and domestic needs. Both states have given a written assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur.
1: At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Shultan district of Kunar and Garmsed district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kwesankar Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. Now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance. Addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशिया खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
4: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
4: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
5: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
3: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे

0: चारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उधर मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
4: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का

0: केंद्र है। 4.9 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
0: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देशभर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमलु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। नमस्कार दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे कोई अपना बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हो, और कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनका संगीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचता, सीधे दिल में उतर जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी महान हस्ती को जिनकी धुनों में बंगाल की मिट्टी की खुशबू थी, लोक संगीत की सादगी थी और शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और आम इंसान के दिल की धड़कन थी। नाम है सचिन देव वर्मन, यानी एसडी वर्मन।
1: वहाँ कौन है तेरा?
0: और हाँ, कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों।

एसडी वर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिचुरा के राज परिवार से जुड़े परिवार में हुआ था, लेकिन उनका मन राजसी सुख सुविधाओं से ज्यादा संगीत की दुनिया में रमता था। उन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और बंगाल की संगीत परंपरा से गहरा प्रभाव लिया। उनकी संगीत यात्रा की सबसे खास बात थी उनकी सादगी। वो जानते थे कि अच्छी धुन को बहुत ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं होती। उनका संगीत सुनते हुए एक बात महसूस होती है कि वो धुन को कभी बोझिल नहीं होने देते थे। बहुत कम साज, बहुत सरल धुन, लेकिन

संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ साथ कदम रखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों तथा हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। मिली, अभिमान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी ये उनकी प्रमुख फिल्में थीं जिन्होंने सिनेमा में अपना इतिहास बनाया। उन्होंने कुछ फिल्मों में गीतों में अपनी आवाज भी थी, जिसमें कुछ गीत बेहद लोकप्रिय हुए जो आज भी लोगों के हृदय में बसे हैं, जिसमें है आराधना का वो गीत काहे कुरोए, वाकई दिल को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

खूबसूरत गीत के बाद आइए बढ़ते हैं अब आपके संदेशों की तरफ। हमें संदेश मिला है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, भेजने वाले हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोरधान खुराना। और ये मैसेज हमें भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, कोहलाल सिंह, अभिराज सिंह और शुभदीप सिंह। और तुलसी जी का एक और मैसेज आया और ये कह रहे हैं कि अर्चना गोयल जी नमस्कार, बड़े दिनों के बाद आपकी मधुर आवाज सुनी है कि कलाकार भी आज एस बी वर्मन जी को याद किया जा रहा है और गाने इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो

तुलसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गौरैया जालंधर से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। और ये हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और इंद्रभान सिंह जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं कि एसडी वर्मन के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, उनके गीत पसंद आ रहे हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अपना संदेश भेज रहे हैं। इनके साथ हैं अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आप हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसीस, सीता और गीता। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं मुंडा टोला बालो छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम। गांव कुम्हार हैडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिवार। और ये लिख रहे हैं कि आज आप महान संगीतकार सचिन देव वर्मन के बारे में, जिन्हें हम सचिन दा भी कहते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनके बारे में बेहतरीन बातें रोचक किस्से और नगमे सुनवा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और हमें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। तो धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब संदेश के बाद सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म बंदनी से।

बर्मन दा के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में एक बात प्रचलित थी कि वो तंग हाथ वाले थे, यानी ज्यादा खर्चा नहीं किया करते थे। उन्हें पान खाने का बेहद शौक था और वो अपने पान भारतीय विद्या भवन चौपाटी से मंगवाते थे। वो फुटबॉल के काफी शौकीन थे। एक बार मोहन बागान की टीम हार गई तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि वो आज खुशी का गीत नहीं बना सकते, यदि कोई दुख का गीत बजवाना हो तो वो उसके लिए तैयार हैं। दरअसल वो जो भी काम करते थे पूरी तल्लीनता के साथ किया करते थे।

कृष्ण वर्मन को 1958 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के साथ साथ 1958 में एशिया फिल्म सोसाइटी अवार्ड भी प्राप्त हुआ और 1970 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म आराधना के लिए। वर्मन दा के संगीत में रचनात्मकता का अलग ही रूप दिखाई देता है, जैसे गाइड का गीत वहां कौन है तेरा, यहां प्रेम है, दर्शन है, जीवन की उलझने हैं और उससे निकलने की कोशिश भी। उनकी धुनों में यही विविधता उन्हें बाकी संगीतकारों से अलग पहचान देती है। उनके पुत्र आरडी वर्मन जो कि एक मजे हुए संगीतकार रहे, उनमें भी यही विविधता थी संगीत की।

आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने याद किया उस संगीतकार को जिसने हिंदी फिल्म संगीत को सिर्फ धुन नहीं दी बल्कि उसे भावनाएं दी। उनके संगीत में कभी नदी की रवानी सुनाई देती है तो कभी किसी प्रेमी का इंतजार, कभी जिंदगी की उदासी तो कभी खिलखिलाती हुई हंसी। शायद उनके गीत समय के साथ पुराने नहीं हुए। कार्यक्रम संपन्न करने से पहले उनके लिए दो पंक्तियां, कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर बार सुनने पर एक नई याद दे जाती हैं। कुछ संगीतकार चले जाते हैं लेकिन उनका संगीत चलता रहता है हमारे साथ। और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

लवर्स, ये आकाशवाणी है। अब उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। अब हमारी नशरियात मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर सुन रहे हैं।

शाम 4 बजे फिल्मी लहू का सफर शुरू होगा जो 4:50 तक जारी रहेगा और 4:50 पर आप खबरें सुन सकेंगे। शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का

आज नई दिल्ली के भारत मंडप में यूपीएससी की सत्साला तकरीबा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हुसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है जिसका बुनियादी उसूल अवाम नवाज नहायत सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देव भवा यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है उसे बड़ी हद तक यूपीएससी और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संग मील तय किए हैं और इसमें कई नई पहलू शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए की जाने वाली सरकारी तकर्रियों में इजाफा हुआ है जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है जिसके नतीजे में आवाम का एतमाद मजीद मजबूत बनाया हुआ है। यूपीएससी के चेयरमैन डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और यूपीएससी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर परखा जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि जंगलात और जंगली हयात का तहफ़ फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए काबिल क़दर विरासत को महफूज रखने के लिए नहायत ज़रूरी है। जंगली हयात के हफ्ता 2026 के मौके पर अपने पैगाम में जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वह जंगली हयात के तहफ़ और उनके मस्कन की हिफाजत के लिए ताउन करें। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मरबूत मस्कन और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जानवरों की महफूज नकल व हरकत और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने पिछली दहाई के दौरान जंगली हयात के तहफ़ में भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया और प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी को उजागर किया। जनाब मोदी ने शेरों के लिए बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद IBCA के जरिए शेरों के तहफ़ के लिए आलमी इत्तेहाद को फरोग देने में भारत के रोल को उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कैप्टन स्मिथ मार्चर की तारीफ की और कहा कि मुल्क को उन पर बेहद फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर मुर्मू ने कहा कि मुश्किल वक्त में उनके गैर मामूली हौसले और हाजिर दिमागी ने सभी को मुतासिर किया है। उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की और उनके गैर मामूली जज्बे को सलाम पेश किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा कि शदीद खतरे के दौरान कैप्टन की गैर मामूली बहादुरी और हाजिर दिमागी तारीफ और तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ माछर ने दूसरों की जान बचाने के लिए बेपनाह हौसले और गैर मामूली अज़्म का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ला फौज को मजबूत करने पर खसूसी तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर माशी निजाम को भी मजबूत कर दिया जाएगा तो इससे पूरा दिफाई बंदोबस्त और भी मुअसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और यह दिफाई निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और अक्वामी दोनों सतह पर मियारी ऑडिटिंग में बेहतरीन इकदाम को अपनाया जाए। जनाब सिंह ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में अखराजात का इंदराज तकरीबन 100% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि यह हौसलियाबी एक संग मील की हैसियत रखती है। सरकार ने डीलरों के लिए शकर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्र की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और यह नवंबर तक जारी रहेगी। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सार्फिन के लिए शक्कर की बिना रूकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इक्तसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया है। पोलैंड के खजाना और इक्तसादियात के वजीर एंड्रेज दोमास्की ने भारत को आलमी सतह पर इक्तसादी रहनुमा और अहम शराकतदार करार दिया। जनाब दोमेस्की ने कहा कि पोलैंड भारत को एक बड़ी तेजी से तरक्की पजीर मईशत और जमहूरियत के तौर पर देखता है और वो
भारत के साथ।

लौट चले। समय इस फिल्म का ये टाइटल नाम आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, आइए अब सोनू निगम और जसविंदर नरोला की आवाजों में हमराज फिल्म का दो गाना सुनते हैं।

लेकिन आइए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं जुड़वा फिल्म का दुगाना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

हमें इसी नगमे के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। निशा पेश है डॉक्टर निसार अहमद फारूकी का लिखा फीचर हजरत निजामुद्दीन औलिया।

0: बेशक अल्लाह के दोस्त मरते नहीं, वो जिंदा है।
1: दुखों से भरी इस दुनिया में जब इंसान हालात की बेरहमी का शिकार होकर यास और नाउम्मीदी के अंधेरे में भटकने लगता है, उस वक्त दूर कहीं से यकीन और मोहब्बत की शुआएं तारीखियों के सीनों को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं और उम्मीद के उफक को जगमगा देती हैं। उस शब मोहब्बत की किरणें जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले और तमाम इंसानियत के दुख दर्द को अपने सीने में समेट लेने वाले सूफी दरवेशों ने रोशन की थी, वो शमें हर दौर में जियाबार रही हैं, आज भी खौफ और

0: कहकर कलमा पढ़ा और इंतकाल फरमाया।
1: हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि अगर इंतकाल के वक्त मेरी वालिदा ये कहती कि मैं तेरे लिए आसमान और जमीन के सारे खजाने छोड़कर जा रही हूँ, तो मुझे वो ज़ौक और लज्जत नसीब न होती जो सुकून कल्ब उनके इस इरशाद से नसीब हुआ। वालिदा के इंतकाल के बाद आपने हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर लिया। अपने दर्द के जोश में आपने पाकपटन के सफर के लिए उसी तरह का अहराम बांधा जिसे हज के लिए बांधा जाता है, और रवाना होने से पहले मस्जिद में नफिल पढ़ने के लिए आए। उस वक्त आप ये सोच रहे थे कि मैंने जो अहराम बांध लिया है ये शरीयत की रूह से जायज है या नहीं। आप नमाज की नियत बांधने वाले ही थे कि मस्जिद के कोने में फटे पुराने कम्बल में लिपटा हुआ एक मजदूर पड़ा था, वो जोर जोर से बड़बड़ाया।
2: अल इल्म हिजाबुल अकबर, इल्म भी एक बड़ा पर्दा है।
1: इस मजदूर की आवाज सुनकर आपने दिल में सोचा कि इल्म पर्दा तो हो सकता है, मगर बड़ा पर्दा क्यों होने लगा। वो मजदूर आपके दिल की इस बात से भी आगाह हो गया और फिर बड़बड़ाया,
2: बड़ा पर्दा है या छोटा है ये सब तो वहाँ जाकर मालूम हो जाएगा।
1: आप ऐसी बेसरो सामानी के आलम में अजोधन के लिए रवाना हुए कि कुछ जागीरा भी साथ नहीं था। कई हफ्ते भूखे प्यासे और प्यादा सफर करते हुए जब हजरत बाबा फरीद की खानकाह में पहुंचे तो अबीदत के नशे में सरशार थे। उस सरजमीन के एक एक जर्रे को निगाहें बोसा दे रही थीं और कदम कदम पर दिल सजदे कर रहा था। रास्ते की धूल में अटे हुए जब आप पहली बार बाबा साहब के सामने हाजिर हुए तो उन्हें बहुत ही शफकत और मोहब्बत के साथ अपने पास बिठाया। खैर आपके तो रास्ते की सरगुजश्त पूछते रहे लेकिन आपकी जबान से अल्फाज ही न निकलते थे। बाबा साहब ने अपने दामाद हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक को बुलाया और उसे फरमाया, मौलाना निजामुद्दीन दिल्ली से आए हैं, इन्हें जमात खाने में ले जाकर ठहराओ और इनके सोने के लिए वहाँ चारपाई बिछवाओ।
0: हजरत बाबा फरीद ने अजोधन को एक गुमनाम और दूर उफ्तादा गांव समझकर इंतखाब किया था ताकि इत्मीनान से वहां इबादत कर सकें और अवाम का हुजूम न हो, मगर रफ्ता रफ्ता उस गांव को मरकजी हैसियत हासिल होती गई और खल्क खुदा की इतनी भीड़ रहने लगी कि रात के 12 एक बजे तक खानकाह में आने जाने वालों का तांता बंधा रहता था। शेख फरीद के मुरीदों की तादाद हजारों से भी ज्यादा थी और आपके खुलफा भी बहुत थे जिनमें बाज बहुत मुमताज और मशहूर भी थे और खुद शेख फरीद के 5 बेटे मौजूद थे, मगर हजरत बाबा फरीद ने अपनी जानशीनी और खिलाफत उला के लिए हजरत निजामुद्दीन को पहली ही मुलाकात में मुंतखब कर लिया।
1: खिलाफत देते वक्त बाबा साहब ने हाजिरी ने मजलिस से फरमाया कि आज मैंने एक ऐसा दरख्त लगाया है जिसकी छाया में बहुत सी खल्क खुदा आराम पाएगी। हजरत निजामुद्दीन ने दबी जबान से अर्ज किया कि हजरत मैं इस अजीम जिम्मेदारी को कैसे निभा सकूंगा, तो हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, खुदा ने तुम्हें इल्म, अक्ल और इश्क ये तीनों जौहर दिए हैं और जिसमें ये तीनों जमा हो उससे दुर्वेशों की खिलाफत खूब होती है। ये भी फरमाया, मैंने खुदा से दुआ की है कि तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिले और तुम्हारे लिए दीन के साथ ही थोड़ी सी दुनिया भी मांग ली है। हजरत निजामुद्दीन के दिल में खतरा गुजरा कि दुनिया कहीं उलझा न ले। बाबा फरीद ने आपके दिल की बात से आगाह होकर फिर फरमाया, फिक्र न करो, दुनिया तुम्हारे दामन को आलूदा नहीं कर सकेगी।
3: ये हजरत बाबा फरीद की मुबारक जिंदगी का आखिरी जमाना था। हजरत निजामुद्दीन को हर साल सिर्फ 3-4 माह के लिए अजोधन में रहने का मौका मिलता था, इस तरह उन्होंने कम से कम 9-10 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल मजमूई तौर पर अपने शेख की खानकाह में गुजारा, जहां अगरचे दीनो दुनिया की हर दौलत लूट रही थी मगर जाहिरी जिंदगी का ये हाल था कि करेल के जंगली फूल उबाल कर खाए जाते और अगर किसी दिन उसमें डालने के लिए नमक की चंद डलियां भी मैसर आ जाती तो गया ईद का दिन हो जाता था। जब कई वक्त गुजर जाते तो बाबा साहब की खानकाह से जंबील भी घुमाई जाती जिसमें हस्ब तौफीक कोई खाना वगैरह डाल देता और वो खानकाह के दुर्वेशों के काम आता। बाप को फक्र फाके का वो जमाना

0: प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीकी फौजियों का आखिरी दस्ता भी इराक से बाहर निकल रहा है। इस तरह ऑपरेशन इनहेरेंट रिजोल्व बाजाबता तौर पर खत्म हो रहा है। मीडिया से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजियों की वापसी को आईएसआईएस पर फैसला कुन कामयाबी करार दिया और कहा कि इससे अमरीका के साथ साथ इराक की फतह की भी अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह इराक में दो दहाइयों से ज्यादा अरसे से जारी अमरीकी फौज की मौजूदगी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तिरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। मानू फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने छोटी कश्ती के मुकाबले में आज चांदी का तमगा जीता। भारतीय तीरअंदाज ज्ञानेश मणिरत्नम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मर्दों का इन्फिरादी कांसे का तमगा हासिल किया। स्क्वाश में भारत को खवातीन के टीम मुकाबले में कांसे का तमगा मिला। भारतीय टीम सेमीफाइनल में हांगकांग से 2-1 से हार गई। इधर मर्दों की क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वजराय तिजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसाइल को मौसर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इक्तसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तिरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामिन शाम का 5 बजा चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की दूसरी मजलिस की यह नशरियात अब इख्तिताम को पहुंचती है। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दी पंजाबी सेवाएं शाम के 5 बजे में हो साडी दूजी सभा शुरू होंदी है। सभा की शुरुआत च समा फैलाओ सराय के प्रोग्राम झोक माही दी।

राम राम जी। सारे भेण भिरावा को मेरे नमस्कार, सत श्री अकाल। आज दे प्रोग्राम विच अपन हिम के आए हां एक कहानी ते एक लोकगीत। कहानी सुने सिन साकू ललिता मणि जी ते दीपाली छाबड़ा जी सुने सिन साकू। आज सिराई की दे बहु प्रसिद्ध लोकगीत। आओ जी प्रोग्राम दी शुरुआत करें दे हां ललिता मणि जी को लो एक कहानी नाल। आज मैं आप सब दे सामने एक कहानी पेश करेंदी पई हां जिंदा शीर्षक है हिक दूजे दे पूरक डू पात। व्हील चेयर ते बुला के सिस्टर मीना ने बुढ़ी मां को प्यार नाल डिठा। मुंह तू वगदी लार को पूंजिया ते बहु कीमती शाल पा दित्ती। आखां ते चांदी हई कि अपना ध्यान रखना मां, पर आख ना सगी। अखां विच अथरू भर आए, गला रुंध गया। मैं कहानी शुरू ते कर दित्ती है, पर उन्दे किरदारा नाल ते तो आपको मिलवाया ही नहीं। मेरी कहानी मेन दो पात्रा ते ही लिखी गई है। मेरी कहानी दा शीर्षक ही है हिक दूजे दे पूरक दो पात्र। हिक पात्र है सिस्टर मीना जो अनाथ है ते बहु अच्छी नर्स है। पूरे हस्पताल दी चेहती है, हर वेले सेवा विच लगी रहंदी है। ते दूजी पात्र है बुढ़ी अम्मा श्रीमती शांति देवी स्वर्गीय सेठ आत्मा राम जी दी कुआर, जो ही शहर दे जाने माने रही सन। पात्रा नाल ते तुसा मिल गिदे, पर इत्थां मैं ए गल दा भी जिक्र जरूरी समझनी आ कि मैं

नामी बिचीची भक्ति न कीती इने उमरा बीती ओ मेडे चलिया छल्ला मीडी चीची भक्ति न कीती इवे उमरा बीती ओ मेडे छल्ले आ आहा मेडे छल्ले आ वाह वाह।

0: जोगिया बे जोगिया बे जोगिया मैं तेरी जोगण होगिया कील पटारी पाले कील पटारी पाले इश्क दी रोगण हो गईया जोगिया बे जोगिया मैं तेरी जोगण हो गईया
1: अपने गीत रेडियो दा पंडा मंच अपनी आवाज नवी पहचान
2: FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा अमृतसर केंद्र है तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस ते हिंदी पंजाबी सेवा शाम दे 5:30 बज चुके ने देश पंजाब मसले दा आगाज हुंदा है

आशा थोड़ी खिदमत च हाजिर। हुण तो थोड़ी देर बाद देश पंजाब दे मसले च सब तो पहला होगी अज दी गल। इसी गल तो फौरन बाद 5:40 ते तुसी सुनोगे हफ्तावारी प्रोग्राम माझे दी महक।

Así es un reciprograma. Majeti Mac. तो सुन रहे हो देश पंजाब प्रोग्राम आकाशवाणी अमृतसर केंद्र से एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से। अगले बढ़ते हैं जी, अगले सिलसिला है पंजाबी गीतों का।

ਸ਼ਰਮ ਜਹੀ ਆਏ ਰੇਤ ਨਾ ਵੀ ਪੁਗਾਈ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹਰੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वीरो जे तुसी सरों सोयाबीन मूंगफली तिल सूरजमुखी या होर तेल बीज फसलां दी काश्त करदे हो तां तुहाडे लई एक लाभदायक सहायता सेवा उपलब्ध है ऑयल सीड्स किसान मित्रा। ए सेवा भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद वालों किसानां नूं तेल बीज फसलां संबंधी खेतीबाड़ी सलाह देण लई शुरू कीती गई है। किसान वीरो ए सेवा राही तुसी फसल दी किस्म बिजाई खादां दी वरतों सिंचाई कीड़े मकौड़ियां अते बीमारी दी रोकथाम अते फसल दी सुचज्जी संभाल नाल संबंधित सवाल पुछ सकते हो। इसलिए अपने मोबाइल फोन विच 40 24 59 81 80 नंबर नूं ऑयल सीड्स किसान मित्रा दे नाम नाल सेव करो अते व्हाट्सएप राही अपना खेतीबाड़ी संबंधी सवाल पुछो। ए सेवा किसानां नूं तेल बीज फसलां बारे विज्ञानक अते खोज आधारित जानकारी प्राप्त करन विच मदद कर सकती है। सो किसान वीरो आधुनिक टेक्नोलॉजी नूं खेती नाल जोड़ो अते अपनी फसल दे नाल संबंधित सही जानकारी लई ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाल व्हाट्सएप राही संपर्क करो। नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 40 24 59 81 80। वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो आकाशवाणी जलंधर ते किसान वाणी प्रोग्राम नाल।
2: नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद किसान वीरो अते पैणो आकाशवाणी दे उपर मैं जसप्रीत कौर हाजिर हाँ तुहाडा अपना प्रोग्राम किसान वाणी लैके। किसान वाणी दे विच असीं तुहानू जानकारी दिंदे हाँ नवीं स्कीमां दे बारे खेती खबरां दे बारे तुहानू दसदे हाँ और उस दे नाल नाल नवीं तकनीकां दे बारे भी तुहानू जानकारी दित्ती जांदी है। ते दोस्तो इस बार जिहड़ी असीं तुहाडे लई जानकारी लैके आए हाँ ओह है PM किसान सम्मान निधि योजना दे बारे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ MSP ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

0: कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
2: मिट्टी नाल प्यार दी परंपरा है, परंपरागत खेती।
3: किसान वाणी प्रोग्राम दे प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ।
1: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਜਾਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036।
2: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देशभर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। नीलम बहन हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम किसान वाणी लेकर के, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनकी जो कृषि में लागत है वो कम आए और उनको फायदा ज्यादा हो, साथ ही साथ जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानें, उनका वो लाभ लें, और जो जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं तो उनका उपयोग वो अपनी कृषि में करें ताकि उनकी जो कृषि है वो उन्नत हो, खर्चा कम हो, लाभ ज्यादा हो।
4: बिल्कुल शशि भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं खाद्य तेल भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है और तिलहन लाखों किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊर्जा विटामिनों का एक प्रमुख स्रोत होते हैं जो विशेष रूप से वंचित और कुपोषित आबादी की छिपी हुई भूख से लड़ने और कैलोरी में सुधार करने में मदद करते हैं।
3: तिलहन न केवल पोषण सुरक्षा में बल्कि आप किसानों के कल्याण में भी योगदान देकर एक महत्वपूर्ण नकदी फसल के रूप में कार्य करते हैं जो ग्रामीण आय और रोजगार को बनाए रखते हैं।
4: और इस दोहरे महत्व के बावजूद देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग ने घरेलू उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और भारत में खाद्य तेलों के प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू मांग और आयात के कारण राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी कि पाम ऑयल मिशन को 2021 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य

0: कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करें, और भी बहुत सी बातें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक जानकारी जिसका विषय है शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई आर मीणा, पूर्व अतिरिक्त आयुक्त प्रसार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली, और इनसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, खेती के लिए पानी और अनुकूल जलवायु बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां वर्षा कम हो और सिंचाई के साधन सीमित हो, वहां भी संभावनाओं की कमी नहीं है। जरूरत है ऐसी फसलों और तकनीकों को अपनाने की जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे शुष्क क्षेत्र में बागवानी की संभावनाएं। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर वाई आर मीणा, पूर्व अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, इससे क्या आशय है?
2: शुष्क क्षेत्र जैसे अपने राजस्थान है, गुजरात का कुछ भाग है और महाराष्ट्र में, मतलब जहाँ पर बरसात कम होती हो और जो एक गर्मी का मौसम है इसमें काफी तेज गर्मी पड़ती हो और वहाँ पर विकट परिस्थितियाँ होती हैं और उनमें हर कोई फलदार पौधा या सब्जी हम उगा नहीं सकते, तो उसके लिए विशेषकर जो सूखे को, गर्मी को, तेज हवा को, हीट होती है उसको सहन करने वाली फसलें, फलों की हों, सब्जियों की हों, वहाँ पर उगा सकते हैं। और विशेषकर हमारे कुछ अनुसंधान संस्थान ये हालातों को ध्यान में रखते हुए, यानी एरिड जोन उसको ध्यान में रखते हुए संस्थानों की स्थापना की है। उन्होंने कार्य किया कि इन क्षेत्रों में फलों की, सब्जियों की क्या क्या किस्में उगाई जा सकती हैं, किस तरीके से उगाई जा सकती हैं। एक होता है इरिगेटेड, जहाँ पर बढ़िया सिंचाई की भी व्यवस्था है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर अलग हालात होते हैं। बिना ज्यादा मेहनत के, मशक्कत के आप चीजें 12 महीने कुछ ना कुछ पैदा कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन सी राज्य हैं या कौन से क्षेत्र हैं जहां इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाई बहनों को?
2: विशेषकर जैसे राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, हरियाणा का भी काफी बड़ा भाग है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग है और कर्नाटक स्टेट में भी बहुत सारा वो है, तो करीब करीब सभी राज्यों का कुछ न कुछ एरिया इस तरीके की परिस्थितियों में आता है। और वहाँ के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो एक ही जैसी टेक्नोलॉजी काम आ जाती है, लेकिन विशेषकर राजस्थान में बहुत एरिया है तो उसमें कोई भी पौधा आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको विशेष गुण होने चाहिए कि वो उन परिस्थितियों में अच्छा कर सके। प्राकृतिक रूप से कई ऐसे पौधे हैं, जैसे खेजड़ी, आपने नाम सुना होगा, खेजड़ी कल्प वृक्ष माना जाता है शुष्क क्षेत्रों में। प्राकृतिक रूप से बिना कोई पौधे बाग लगाए वो खेतों में किसानों के यहाँ उगता रहा है, उस पर भी कई संस्थानों ने काम किया है काफी, खासकर CIAH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है बीकानेर में, और दूसरा एक बड़ा संस्थान है जो इन फसलों पर काम करता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, वो सभी फसलों पर काम करता है, मतलब अपनी धान वाली फसलें जो हैं, ग्रेन वाली, बाजरा, ज्वार, मक्का, मोटे अनाज, उन पर भी काम करता है और फलों का भी वहाँ पर एक डिवीजन है। लेकिन बीकानेर में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है वो सिर्फ शुष्क क्षेत्रों में फल सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, उनकी किस्मों का कैसे विकास कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो शुष्क क्षेत्रों में फल सब्जियां उगाई जाती हैं उन पर बहुत ज्यादा अनुसंधान नहीं हुआ पहले, लेकिन ये संस्थानों ने काफी काम किया, ढेर सारी किस्में निकाली जो वहाँ पर सफलतापूर्वक पहले अपने फार्म पर उगाते हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों के फार्म पर भी जाके ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसानों की भागीदारी होती है।
1: तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करें कि कम वर्षा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बागवानी को किस तरह एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है?
2: शुष्क बागवानी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान जाएगा कौन से पौधे वहाँ चल सकते हैं। अब उनमें प्रमुख जो पौधे हैं जैसे बेर, अनार, आंवला, करौंदा, एक और लसोड़ा आता है, गोदा बोलते हैं जिसको, जिसका अचार बनता है, ये हैं। केर प्राकृतिक रूप से होता है, इसके अलावा खजूर की खेती आपने सुना होगा बीकानेर, जैसलमेर साइड में, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी इन फसलों पर काफी काम हुआ है।
1: अच्छा।
2: वहाँ की ढेर सारी किस्में आंवले की भी हैं, इसकी बेल पत्र की भी हैं, अनार भी बहुत अच्छा है, अनार की जो क्वालिटी हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इधर बागान लगाते हैं उसमें आती है, क्यों उसके

0: ये रात का जो टेम्परेचर तो चाहिए डाउन, और दिन में खूब लू चलती हो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फल का जो कलर है वो एकदम डाल आता है, दूर से ही देख के बंदा आकर्षित हो जाएगा, और बहुत अच्छे जूसी फल। गुजरात में जैसे कच्छ भुज जो एरिया है वो भी ये सब एरिड जोन का ही एक पार्ट है, वहाँ पर भी खजूर की खेती भी होती है और दूसरे अनार आंवला और ये सब भी उगाते हैं लोग।
1: तो डॉक्टर साहब, पौधों का चयन करते समय किसान को मिट्टी और स्थानीय जलवायु की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: पौधों का चयन करते समय किसानों को सबसे पहले तो किस्मों का, क्योंकि किस्म अगर एक बार गलत लगा दी, मान लो उस क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई नहीं है, तो फिर उसमें आप बाद में कुछ भी करते रहो, ज्यादा सुधार नहीं होता। जहां पर भी हम बागान लगा रहे हैं, बेहतर हो उसी के आसपास के जो संस्थान हैं उस राज्य में या उन्हीं फसलों पर काम करने वाले जो संस्थान हैं उनसे किस्में ली जाएं। बाकायदा संस्थान प्रचार प्रसार करते हैं कि उनके द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, कितना उत्पादन देते हैं, कब उनको लगा सकते हैं। प्रशिक्षण भी किसानों को मुफ्त में दिया जाता है। तो उन्नत किस्म के जो ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार होते हैं पौधे, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक विधि से, बीज से अगर हम कोई पौधे तैयार करते हैं, फलदार पौधे तैयार हो जाएंगे लेकिन पूरे हूबहू गुण नहीं आएंगे जिस फल का हम बीज लेंगे उसके।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी दिया जाता है हमारे जो किसान भाई हैं या युवा साथी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था पूरे देश में है, ना सिर्फ शुष्क क्षेत्रों में, सभी देश में। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र है, अभी तो लगभग 800 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो गए देश भर में, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 150 संस्थान है वो सब प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। 80 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय देश भर में खुले हुए हैं, और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में किसान के मन में कोई शंका नहीं रहती। प्लांटिंग मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है जो बागवानी वाली फसलें हैं, ये संस्थान पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जाएं वाजिब दामों पर।
1: अगर कोई किसान नए बाग लगा रहा है, शुष्क क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूमि की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए उन्हें और किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है?
0: जो हमारा फसल हम लगाते हैं फलों की या बागान लगाते हैं, ये कोई एक साल का मुद्दा तो है नहीं,
1: नहीं।
0: तो उनको पूरी प्लानिंग के साथ कृषि वैज्ञानिकों से जो प्रशिक्षण लेते हैं पहले से तय कर लें कौन से पौधे लगाने हैं, उसी हिसाब से खेत को तैयार करके उसमें पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, जिससे वो मशीन जो है फार्म मैकेनाइजेशन उनके माध्यम से दूसरा काम भी कर सकें। और पौधे से पौधे की रिक्वायरमेंट अलग अलग पौधों की अलग अलग होती है। जैसे मान लो आप अनार लगा रहे हैं तो अनार 5 मीटर पर लगा सकते हैं, 4 पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेर को कम से कम 6 मीटर का दूरी रख लो, तो 5 से 8 मीटर के बीच में ज्यादातर इनकी दूरी होती है। आंवला लगाते हैं हम, वो भी काफी फैलते हैं और ऊपर भी ज्यादा बढ़ते हैं वो, तो उनमें भी 6 मीटर से 8 मीटर तक की दूरी किस्मों के आधार पर। और गर्मी के मौसम में जब ऑफ सीजन हो, खेत खाली हो, पूरा जुताई उताई करके पाटा लगा के उसमें गड्ढे खोद लें, वो कम से कम 2-2.5 फीट का गहरा और उतना ही चौड़ा गड्ढा खोद लें, थोड़ा तपने दें उसको धूप में, गर्मियों में तो गर्मी काफी तेज रहती है। उसके बाद में जो सड़ी हुई गोबर की खाद और ये थोड़ी सी तले में उसके चिकनी मिट्टी अगर तालाब की डालते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, क्योंकि आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में जो मिट्टी है वो रेतीली होती है, बालू, तो बालू में आप पानी जब भी पौधे को देंगे लीचिंग से वो चला जाएगा। अगर उसके तले में जो गड्ढा है उसमें आपने चिकनी मिट्टी डाली तो वो काफी समय तक उस पौधे को उपलब्ध होगा, और ऊपर फिर मिट्टी जो हमने खोदी है उसको और उसमें खाद वगैरह मिला के उसको सड़ी हुई होनी चाहिए खाद, नहीं तो दीमक भी काफी कमाल करती है, दीमक शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा आती है।
1: तो डॉक्टर साहब, उस समय क्या कोई खाद के साथ हम दवा भी मिक्स कर सकते हैं?
0: लगाते हैं, और दीमक के लिए पाउडर भी कई आते हैं वो। अच्छा, भी इसके अलावा पौधा लगाने के बाद में जब रोप जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आती हैं। अब दूसरी कई दीमक की दवाइयाँ आ गई हैं, उसको घोल के 2-4 ml डाल दो पानी में और नजर रखें। कभी ये नहीं कि आप महीनों तक देखा ही नहीं रोसों, काफी सारे पौधे मर गए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सूखा और शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों की, जब कम वर्षा की बात आती है तो सिंचाई की भी बात आती है, क्योंकि पौधा चाहे जहाँ भी हो पानी की जरूरत होती है। तो कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे हमें पानी देना है और कितना देना है, कब कब देना है?
0: खासकर जो सिंचाई की व्यवस्था है, किसान भाई कई तरह की तैयारी करते हैं उसके लिए। एक तो बारिश का जो पानी है उसको बड़ा सजो के रखते हैं इन क्षेत्रों में लोग, डिग्गी बोलते हैं कई जगह, या वाटर हार्वेस्टिंग के जो दूसरे तरीके हैं, खेत में जिधर ढलान है उस तरफ बना देते हैं गड्ढा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसके हिसाब से वो पानी उनमें कलेक्ट हो जाए ना, उसको फिर बूंद बूंद सिंचाई विधि से काम में ले सकते हैं। उसके लिए भी अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, प्रशिक्षण भी मिलता है और बागवानी विभाग खुद ही ये सारी चीजें देता है। केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट हैं वो प्रशिक्षण देते हैं, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करा देते हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी मिल जाती है इन कामों के लिए।
1: और डॉक्टर साहब, वर्षा का पानी जल संरक्षण करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे कदम उठाते हैं सरकार, तो उसके लिए भी किसान भाई बहन कुछ उपाय अपना सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफी योजनाएं हैं।
1: हाँ।
0: फार्म पॉन्ड बनाने के लिए, एनीकट बनाने के लिए और ड्रिप वगैरह पे भी काफी अच्छी सब्सिडी है, और आप पॉली हाउस वगैरह भी लगाते हैं उनके लिए भी 70-80% तक भी सब्सिडी मिलती है किसानों को, प्रशिक्षण मिलता है। और अभी तो मैंने देखा कई छोटे किसान भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं जिन्होंने ये पॉली हाउस वगैरह लगाए। खीरा की खेती, वो हर दूसरे दिन आप तोड़ लो और आसपास के आप मार्केट में बेच सकते हैं, उससे अच्छी कमाई होती है कम जगह से, और विपरीत परिस्थितियों से भी वो निपट लेता है क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, एक सवाल कि जैसे बागवानी लगा रहे हैं हमारे किसान भाई, तो जो नीचे की जो जमीन है बहुत सारी खाली पड़ जाती है जब पौधे बड़े हो जाते हैं, तो क्या उस जमीन में भी कुछ फसल उगा सकते?
0: कम से कम पहले 3-4 साल तो काफी स्पेस होता है। अनार भी लगाते हैं तो 5-5 मीटर की दूरी पर लगा रहे हैं, कोई 6 मीटर की दूरी पर लग रहा है पौधा
1: जी।
0: उसमें लाइन के लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखते हैं, आराम से आपके कृषि के यंत्र जो भी हैं, ट्रैक्टर हैं, हल है, कुछ भी चलाना चाहें वो चला सकते हैं। तो उनमें एक तो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और जो शुष्क क्षेत्र है इनमें गर्मी के टाइम में जो रेनी सीजन होता है उसमें ये उगाते हैं मूंग, मोठ, दलहनी फसलें, तो इनसे क्या होता है किसानों को अतिरिक्त उपज भी मिलती है, आय भी होती है और उपजाऊ क्षमता उस जमीन की बढ़ती है। पौधों का भी रखरखाव ठीक रहता है क्योंकि इससे फलों को या उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। पानी है किसान के पास अच्छा मीठा पानी, तो वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं उसमें, और 4-5 साल में जब पौधे खूब बड़े हो जाएं तो उनका ही अच्छे से रखरखाव करें। क्यों, बेर जैसे बागान अगर हम लगा रहे हैं, हर गर्मी में उसमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप आलस करके, बेर में क्या होता है जब टहनी मान लो कोई बड़ी हुई है उसका 70-75% भाग काट देंगे तो वहां से कई टहनियां निकलती हैं, और बेर में हमेशा नई जो टहनी निकलती है उसी पे फल लगते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है गर्मी में मई के महीने में प्रूनिंग, और शुरू के दिनों में जो भी फलदार पौधे लगाएं उनमें कटाई छटाई जो साइडों से निकलते हैं उनको हटाना होगा। कई बार वो नीचे रूट स्टॉक में से निकल जाता है जंगली, ध्यान नहीं दिया तो आपका ग्राफ्टेड मर जाएगा और वो जंगली पनप जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जो आपने शब्द कहा ग्राफ्टेड या ग्राउटिंग जिसको कहते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है?
0: ये सबसे महत्वपूर्ण है
1: जी,
0: क्योंकि जो वानस्पतिक विधि से तैयार करते हैं हम पौधे, जिसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग और जो भी पौधे सरकारी संस्थान प्रोवाइड करते हैं वो ग्राफ्टिंग विधि से, इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो आपको अच्छी गुणवत्ता जो हुबहू आ जाएगी जिस पौधे से भी आप ग्राफ्टिंग करेंगे, और दूसरा आपको फलत जल्दी मिलने लगेगी। एक बीज से कोई पौधा आप तैयार करेंगे वो मान लो 6-7 साल बाद फल देगा, आपका ग्राफ्टेड पौधा नेक्स्ट ईयर से इसमें फल मिलने लग जाएगा, भले उत्पादन कम हो। फलदार पौधों में हमेशा वेजिटेटिवली जो प्रोपोगेट करते हैं ग्राफ्टिंग बडिंग से, वही पौधे लें, क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश की गई किस्में लें, विश्वसनीय जगह से लें, चाहे बागवानी विभाग से लें या हमारे संस्थानों से लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने जैसे राजस्थान की बात की, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, लू भी बहुत चढ़ती है, तो ऐसे सूखे क्षेत्रों में अपनी बागवानी या पेड़ पौधों को बचाने के लिए या कीट और बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने?
0: जैसे एक तो पौधा हम नए नए लगाते हैं बहुत जरूरी होता है, सरकंडे कहर इसके वो लगा देते हैं जिधर से हवा का ज्यादा मूवमेंट रहता है ना, उसको पूरा प्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे सीधे जो नई नई कोपल है पौधा बढ़ रहा है उस पर नहीं पड़े, तो ऐसे गर्मी में प्रोटेक्ट करते हैं। और लोकली जो चीज होती है उसके लिए कोई विशेष चीज नहीं लाते। और दूसरा पानी, गर्मी के टाइम में जब लू के थपेड़े चलते हैं नमी बनी रहे पौधे के थाले में तो उससे उसको काफी प्रोटेक्शन मिलता है। और दीमक का विशेषकर गर्मी में ही उसका भी प्रकोप होता है, तो उस टाइम बीच में चेक करते रहें, दीमक की दवाई भी लगाते रहें। एक बार जड़ें अच्छे से जम जाती हैं पौधे की फिर तो वो भी लड़ने की क्षमता रखता है कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है उनसे।
1: तो डॉक्टर साहब, अंत में जो किसान शुष्क क्षेत्र में बागवानी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या महत्वपूर्ण संदेश होगा?
0: मेरा यही संदेश होगा किसान भाई, क्योंकि हमारे शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर किसानों के पास जमीन भी खूब होती है, वो परंपरागत खेती से हटके मूंग, मोठ, बाजरी तो सीजन में बोते ही हैं, बाद में खाली पड़े रहते हैं खेत, तो कुछ ना कुछ भूभाग पर वो फलदार या सब्जियों की खेती करें और उन्नत किस्म के पौधे लगाएं। फलदार पौधों 20-30-25 साल तक चलते हैं और बीच में शुरुआती दिनों में साग सब्जी दूसरी फसलें आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। संस्थान कई सारे सरकार ने खोले हुए हैं शुष्क क्षेत्रों में, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह आसपास संस्थान है। और राज्यों के जो बागवानी विभाग हैं, ढेर सारी स्कीम बागवानी विभाग चलाते हैं, केंद्र सरकार की मदद से भी और अपने खर्चे पर भी। वो प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, कृषि सहायता भी देते हैं
1: जी।
0: एक और टोल फ्री हेल्पलाइन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खोल रखी है, टोल फ्री किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551। तो ये सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक साल के 365 दिन मुफ्त सेवा है किसानों के लिए। देश की 22 प्रमुख भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है। जिस क्षेत्र से भी किसान करेंगे उनको उन्हीं की भाषा में हमारे फार्म टेली एडवाइजर वहाँ पर होते हैं, वो जवाब देंगे।
1: किसान भाई बहनों, शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर वायर मीना आज उन्होंने हमें विस्तार से बताएं और हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे और सूखे वाले क्षेत्रों में अच्छी बागवानी की संभावनाएं भी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं, किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वाई आर मीना और इनसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा
3: और नीलम बहन। अब अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: बहन भाइयों, आप पुष्पा गोसाई से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं मौसम का हाल। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने की संभावना है
0: और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
1: और अब नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाइयों को इंतजार होगा मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य अच्छे से संपन्न कर पाएं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के कृषि भौतिकी संभाग की वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी कैप्टानिया थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। इसके बाद राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं
0: और गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें और अगले दिन आप बुवाई कर सकते हैं।
1: इस समय किसान भाई गाजर की बुवाई मेड़ों पर कर सकते हैं। उन्नत किस्में पूसा रुधिरा, बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़। बुवाई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें और खेत में देसी खाद पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।
0: और सरसों की अगेती बुवाई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28 और पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें, खेतों की तैयारी करें। और किसान बहन भाइयों, इस समय मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें।
1: और इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस मौसम में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होता है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह की। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं आजादपुर मंडी का फल सब्जी का भाव। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सब्जी का भाव।
0: आलू बिका 12 रुपए प्रति किलोग्राम और प्याज बिका 34 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 24 रुपए प्रति किलोग्राम और बैंगन बिका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, खीरा बिका 25 रुपए प्रति किलोग्राम, भिंडी 20 रुपए प्रति किलोग्राम और गोभी बिकी 40 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: और अब बात करें फलों के भाव की, तो केला बिका 19 रुपए प्रति किलोग्राम, सेब 80 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद 60 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता 30 रुपए प्रति किलोग्राम और तरबूज 25 रुपए प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना फल सब्जी का थोक भाव। और अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपको आज का किसान वाणी कार्यक्रम कैसा लगा। इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। आप सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:35 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गजल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

0: अभी आप सुन रहे थे गजल का कार्यक्रम, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने को 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल राजघाट और विजय घाट पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
4: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
4: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुआ ये अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि यमुना के प्रति नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और लोगों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी एक साथ यमुना की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेकर इस जन अभियान का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नाले का पानी बिना सफाई के यमुना नदी में नहीं गिरेगा।
5: सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम है, नालों को टैप करने का काम है, नए सीवेज प्लांट खड़े करने का काम।

0: काम है, डिसिल्टिंग करने का काम है, सीवर लाइन जोड़ने का काम है, ताकि एक भी ड्रेन या एक भी नाला यमुना में बिना ट्रीट किए ना गिरे। ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है। तो हम सब मिलकर के जब यमुना के प्रहरी बनेंगे तो निश्चित रूप में माँ यमुना साफ होना शुरू होगी।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमामि गंगे जैसे अभियानों का उद्देश्य देश की नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद यमुना की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए व्यापक कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
2: बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी है। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें स्मार्ट मीटर और पानी की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 328 MGD होगी। इस परियोजना पर 7,373 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा वजीराबाद जल आपूर्ति परियोजना और 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। निर्धारित शर्तों के तहत अलग अलग पानी के कनेक्शन देने को भी मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: केंद्र ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में दीर्घकालिक योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से उसके प्रमुख विभागों के लिए 5 साल की पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली सरकार के विभागों से 5 साल के लिए पूंजीगत व्यय और निवेश का ब्यौरा देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आईटी पार्क में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की रियल टाइम निगरानी, एआई आधारित विश्लेषण, शिकायतों और फील्ड निरीक्षण से जुड़ी जानकारी तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करेगा।
4: इस केंद्र का उद्देश्य केवल प्रदूषण संबंधी आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि तकनीक से प्राप्त जानकारी को जल्द से जल्द परिणामों में बदलना है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर से प्राप्त रियल टाइम जानकारी को फील्ड स्तर की कार्रवाई से सीधा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक, डेटा और फील्ड प्रवर्तन को एक साथ जोड़कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदूषण हॉटस्पॉट, नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और संबंधित विभागों तक जानकारी पहुंचाकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
0: छोटे समय में इतना शानदार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां बनाएगी। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन साइटों को भी यहां से मॉनिटर किया जाएगा, जो एआई ड्रिवन कैमरास के माध्यम से यहां देखी जा रही है। यहां हमारा मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए जो मशीनरी है उसको भी यहां से जीपीएस के माध्यम से मॉनिटर हो सकती है।
4: इस वर्ष सर्दियों के दौरान 78 सब डिवीजन स्तर की टीमें इस केंद्र के माध्यम से निगरानी करेंगी। इसके अलावा वायुदूत टीमों के माध्यम से प्रदूषण कार्य गतिविधियां की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इससे सफाई और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकेगा। ऋषु और निशा के साथ सौम्य शरण, प्रादेशिक समाचार दिल्ली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत आज देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों में स्वच्छता और कचरा निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी अभियान में भाग ले रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
5: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई के प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
1: इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कमला नेहरू रिज और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दिल्लीवासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया तथा स्वच्छ तथा सुंदर दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने तुकमीरपुर स्थित पुष्पांजलि स्कूल में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जिम्मेदारी और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं।
6: आज पूरी दिल्ली में लगभग 300 जगह पर इस प्रकार का सफाई अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रही हैं। सभी मंत्रीगण, विधायकगण, निगम पार्षदगण अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। स्वच्छ दिल्ली का एक लक्ष्य है जिसके लिए काम किया जा रहा है।
1: दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज रामलीला के आगामी आयोजनों की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं पर दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में आयोजन स्थलों, आवश्यक सुविधाओं और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर कल राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान रिंग रोड पर राजघाट से सलीमगढ़ वाय पॉइंट और कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर निषाद राजमार्ग, राजा राम कोहली मार्ग, BS-Z मार्ग पर ITO चौक से दिल्ली गेट, शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर, आसिफ अली रोड, गुरू नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर कल राजधानी में पिंक सहेली स्मार्ट NCMC कार्ड वितरण केंद्र बंद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख समुदाय को गुरु अंगद देव के गुरु गद्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु अंगद देव की शिक्षाएं सभी को विनम्रता, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में UPSC शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दादी कौन सा प्लांट है?
9: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
10: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
8: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
10: क्यों?
8: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
10: थैंक्स बप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
11: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
12: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आइए सुनते हैं मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। जी हाँ, और कार्यक्रम चूंकि गीत मालिका है यानी कि ऐसा माला जिसमें गीतों भरी बातें हों, गीत हो और वो गीत जो आपके दिल को छू जाए। जी हाँ, उन्हीं गीतों का सफर अब शुरू करते हैं। और एक वक्त था जब गीतों का सफर, और या कहें तो गीतों का ऐसा लड़ी उस वक्त बनकर आया था जब हम लोगों ने उन गीतों को लेकर कई सारी ऐसी बातें कही थी कि ये वो जमाना है, ये वो दौर है जब गीत बहुत ही खूबसूरत बनते थे। जी हाँ, उसी दौर की बात कर रहे हैं, वही तो है 90s का दौर।

जी हाँ, ये वो दौर जिस वक्त के सारे गीत हिट होते थे, और तो और उस वक्त रोमांटिक जो गीत हैं उनका सिलसिला कुछ ज्यादा ही चला था, और उन गीतों को भूलना आज भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सारे गीत जो है वो सुपर डुपर हिट रहे थे। और फिर जब उस दौर की बात करें तो वो खूबसूरती और प्यार मोहब्बत से भरे गीत, उनमें से ज्यादातर गीत तारीफों वाली होती थी, और तारीफ सुनना किसी नहीं भाता। वो जमाना ही कुछ ऐसा था, कुछ खास था। जिस वक्त वो दौर चल गया जब गीतों में मोहब्बत, तारीफ और उसका लहजा, उसकी धुन एक से बढ़कर एक हुआ करते थे। और जब तारीफ की बात चल रही है तो तारीफ सुनना कहते हैं ना सबको भाता है, तो उस वक्त जब ऐसे गीत आए वो सारे गीत हिट हुए थे। उनमें से एक गीत ये भी है, लेकिन उसके लिए दो शब्द ये जरूर कहेंगे कि तुम्हारी सादगी भी कयामत धाती है, ये खूबसूरती दिल को चुरा ले जाती है। तारीफ करूं क्या मैं तुम्हारी, हर वक्त ये नजर तुम्हें ही देखती रहना चाहती है।

सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ और गीत 90s के जहां पर तारीफ तो बहुत ज्यादा है और तारीफ सुनना तो हमें भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब तारीफ की बात होती है तब कहते हैं ना कि इंसान खुद सामने से तारीफ करता है और हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप तारीफ सुनने के लिए बेकल रहते हैं यानी बेताब हो जाते हैं और आप खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी तारीफ तो करो। और जब इन्हीं बातों को लेकर गानों में उतारा जाए तो वो गीत कैसा बनेगा, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं में से एक गीत, 90s के ही है, आपको मजा आएगा, जरूर सुनिए।

तारीफ वही करते हैं और उसकी ही करते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने वालों की तारीफ तभी होती है जब दिल और नजर दोनों ही उसका हो जाता है। जी हाँ, वो नजर तो सिर्फ वही चाहता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको ही देखते रहें। और यकीन मानिए, जब ये पहली नजर का मोहब्बत होता है, वहां पर मोहब्बत कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि आंखें मिली और कोई दिल में उतर गया। जी हाँ, और तब जो तारीफ होती है वो दिल से होती है।

ये वही तो मोहब्बत है जो पहली नजर का होता है। कहते हैं ना, मोहब्बत में जुबां से ज्यादा नजरें काम करती है। जब से हमने तुमको एक नजर देखा है, दिल जिगर पर अजीब सा असर देखा है, आंखों ही आंखों में चुरा लिया दिल मेरा, लगा जैसे जिंदगी का हर लम्हा थम गया है।

और जब चाहत की बात होती है तो बात आती है कि ये चाहत तो नजरों का ही खेल है। जी हाँ, नजरों से जब मोहब्बत हुआ तो फिर चाहत अपने आप बढ़ गया, और अगर फिर क्या, जब नजरों से ही मोहब्बत हुआ और चेहरा ढका हो, घूंघट की आड़ में हो, तब क्या होता है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, घूंघट की ओट से जब तेरा दीदार हुआ, बिना बात के ही हमें तुमसे प्यार हुआ, ये पर्दा भी तो तेरी खूबसूरती छिपा न सका, हर नजर में बस तुझ पर एतबार हुआ।

कहते हैं कि तारीफ आप चाहे लाख कर लें, लेकिन अगर आपने तारीफ में अपनी महबूबा की तुलना चांद से नहीं किया तो फिर क्या बात, तब तो फिर तारीफ अधूरा ही माना जाता है। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि गीतों में तुलना होती है तो चांद से, और फिर जब गीतों में इन शब्दों को डाला जाए तो गीत खूबसूरत तो होना ही है। 90s के गीत सुन रहे हैं और कार्यक्रम है गीत मालिका, मैं हूँ पूजा भारती। गीत मालिका फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत चांद से तुलना कर ही दी गई है, आइए सुनते हैं उस गीत को।

चांद से तुझको जो दे निस्बत सुबह इंसाफ है, चांद के मुंह पर है छाई तेरा मुखरा तो साफ है। वाकई में तुलना अगर चांद से भी करते हैं तो चांद में भी तो दाग है। फिलहाल आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, वक्त अब खत्म हो चुका है। मुझे पूजा भारती को दीजिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत मालिका से अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग

0: लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
1: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
2: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिन्दुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
3: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
4: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
3: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत

0: विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
1: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
2: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
3: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अन्य दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमरीका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bagged 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
5: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा. हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो. इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है.
4: The Prime Minister said an examination should not be considered just an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Machar for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump have also hailed Smith Machar as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Machar for saving the lives of 174 people on board Tel Aviv-bound Fly Dubai flight. Prime Minister Modi said Captain Smith is a hero and India is proud of him.
5: Bharat ke Captain Smith ne जिस प्रकार से धैर्य सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया. हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है.
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो स्पोक टू द वाइफ एंड पेरेंट्स ऑफ कैप्टन स्मिथ मच्छर. The ambassador of India to the UAE, Deepak Mittal, met Captain Smith Machar's family in Dubai. He informed our West Asia correspondent that Captain Smith has been flown to UAE for treatment and his condition is stable.
6: Brave son of India, Captain Smith has done really wonders, a great service to the humanity, and led with an example and saved so many precious lives and averted tragedy. I met him along with his family here in the hospital in UAE. I was very relieved and very reassured, I would say, that he's doing well, he's quite stable. He was talking, he was chatting, bit of discomfort, but I think he's under good medical care here in UAE.
4: Meanwhile, special prayers are being offered across major pilgrimage sites in Gujarat for the speedy recovery and long life of Fly Dubai Captain Smith Machar. A report.
7: Special prayers and continuous Vedic chants are underway at the holy shrines of Somnath and Ambaji for the quick recovery of Braveheart Captain Smith Mutcher, who is originally from Gujarat. Special prayers were offered at the Chanchar Chowk of Ambaji Temple, while an uninterrupted Mahamrityunjay Mantra Jap and Mahapuja began at the Somnath Jyotirling. Joining the nation in praying for the captain, Chief Minister Bhupendra Patel praised his selfless valor and announced the prestigious Vishisht Gujarat Garima Award to honor his heroic actions. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Union Home Affairs Minister Amit Shah today chaired a meeting in New Delhi to resolve the long-standing Mahanadi water dispute. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil, the Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha, and other senior officials were present at the meeting. The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. After talks failed to resolve the issue, the Mahanadi Water Disputes Tribunal was constituted in March 2018. Government has extended the validity of exempted fast tags from existing 1 year to up to 5 years for Divyangjan, depending on the degree of disability. The centre has revised the guidelines for issuance and renewal of the exempted fast tags for eligible Divyangjan and persons with disability beneficiaries. The guidelines will come into effect from tomorrow. More in this report.
8: The revised provisions are aimed at making the national highway tolling ecosystem more accessible, transparent and user-friendly for eligible Divyangjan. Under the guidelines, vehicles specially designed and constructed for use by persons with physical disabilities as well as vehicles registered under the ownership type Divyangjan will be issued exempted fastag. It will be based on the percentage of disability recorded in a valid disability certificate, unique disability identity card or other applicable records. The revised framework is also aimed at bringing greater uniformity in the issuance and renewal of exempted fastag for eligible Divyangjan and PWD vehicles while reducing the need for repeated procedural formalities. With Suparna Sekhya, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
4: The government has extended the last date for submission of applications under the National Means Come Merit Scholarship Scheme until the 31st of this month. The Ministry of Education said the extension will provide eligible students additional time to complete their applications on the National Scholarship Portal and facilitate timely verification by the concerned authorities. 8 students drowned at Divyagar Beach in Raigarh district of Maharashtra today. Police said all 8 bodies have been recovered. The students were part of a group of 42 students from a private coaching class in Alandi, Pune district. Some of the students were studying in class 11, while others were in class 12. Police said some students from the group went swimming at the beach, located around 170 kilometers from Mumbai. 8 of them could not return to the shore. This is Akashwani giving you the news.
9: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News On Air Official on YouTube.
4: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. In this special series, today we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the establishment of monuments like the National War Memorial and National Police Memorial.
10: The National War Memorial was established in January 2019. The monument, built near India Gate, is dedicated to honoring soldiers of the Indian Armed Forces who made supreme sacrifice in conflicts after independence. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for busts of 21 soldiers who have been conferred with the nation's highest gallantry award in war, Paramveer Chakra. In his Mann Ki Baat program on Akashwani in 2019, Prime Minister Narendra Modi had said that the memorial symbolizes the spirit of valor of the country's brave soldiers.
2: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें।

0: मंजूरी की नौयत के मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांग जन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्ट टैग्स के जारी किए जाने और तजदीद से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत कल से नाफिजुल अमल होंगे। पहले की हिदायत के मुताबिक दिव्यांग जन के फास्ट टैग्स की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हिदायत के मुताबिक 70% से 100% मंजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्ट टैग्स 5 साल तक कारामद रहेंगे, जबकि 40% से 70% तक की मंजूरी वाले अफराद का फास्ट टैग 4 साल तक काबिले अमल रहेगा। बिहार में मुसलसल सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। रियासत की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब की इस सूरत हाल के पेश नजर वजीर आला सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव कार्रवाई में ताउन के लिए भारतीय फिजाइया से मदद तलब की है। गंडक नदी की आबी सतह में इजाफा और कई मकामात पर पुश्तों में शिगाफ की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। सारण, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण और वैशाली जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। बागमती और कोसी नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। अमरीका ने ईरान की वजारत दिफा और मुसल्ला अफवाज लॉजिस्टिक्स MODAFL के लिए हथियार और फौजी साजो सामान खरीदने में मुबैना मदद की पादाश में कई ममालिक के 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। द मीडिया लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी आयद किए गए अफराद में एक पाकिस्तानी कारोबारी समेत उससे मुंसलिक 3 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा मजकूरा कारोबारी पाकिस्तान में कायम कैवेलियर ग्रुप का चेयरमैन है। ये एक प्राइवेट दिफाई कंपनी है जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सरगर्म अमल है। इसके साथ ही अमरीकी हुकाम ने इल्जाम लगाया कि ये कारोबारी फर्द और कंपनी ईरान की वजारत दिफा के लिए बिचौलियों के तौर पर काम कर रहे थे और हथियारों की खरीद और तकसीम में मदद कर रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरब में कायम कैवेलियर डायनामिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई सऊदी हुकाम के ताउन से अंजाम दी गई। अमरीकी वजीर खजाना बेसेंट ने कहा कि अमरीका इकतसादी बायकॉट की कार्रवाई के तहत ईरान को मदद फराहम करने वाले अफराद और कंपनियों को निशाना बनाना जारी रखेगा। यह मुहिम ईरानी हुकूमत के इकतसादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए अगस्त में शुरू की गई थी। जापान में जारी एशियाई खेलों 2026 में आज भारत ने चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगों समेत कुल 5 तमगे जीते हैं। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश सिवाच ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में जापान के पहलवान को 0-4 से हराने के बाद चांदी का तमगा जीता। इससे पहले सुबह में भारत के कश्तीराम मरो फ्रांसिस और प्रिंस कुरिनिस्कल नोबेल ने मर्दों के कश्तीरानी मुकाबले में पहला चांदी का तमगा जीता। तीरंदाजी में मर्दों के कंपाउंड इन्फरादी मुकाबले में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य का तमगा जीता, जबकि स्क्वैश में भारतीय मर्दों और खवातीन की टीमों ने कांस्य के तमगे जीते। इस दौरान खवातीन की हॉकी टीम और मर्दों की क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। इस तरह तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 10, चांदी के 23 और कांस्य के 32 तमगों समेत कुल 65 तमगे अपने नाम कर चुका है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वजीर आजम ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक देरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्ट टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी और ग्रेको रोमन कुश्ती मुकाबलों में चांदी के तारीखी तमगों समेत आज 6 तमगे जीते हैं। मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमें भी फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सेहत खुदा की सबसे बड़ी नेमत है और इसका ख्याल रखना हम सब पर फर्ज है। मगर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते और सेहत के जो जवाबित हैं उससे दूर हुए जाते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो हमें खराब तर्ज जिंदगी के सबब घेर लेती हैं।

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

ولا

महबूब हक जुल एहतराम, एक नजर तो देख लो। महबूब हक जुल एहतराम,

बिगड़िया बन जाए सबकी, मुश्किलें आसान हो, बिगड़िया बन जाए सबकी।

0: हमें महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में सलाम पेश कर रहे थे सुल्तान नियाजी। सामीन हाजरीन, उर्स महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में सुल्तानुल मशायक महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें उर्स मुबारक की दूसरी शब की तकरीबात का सिलसिला जारी है और अब उर्स तकरीबात की दूसरी अहम पेशकश मनकबती मुशायरे का आगाज होता है और मैं माइक देता हूं अपने साथी इरफान आजमी के लिए ताकि वो आपको आगे का अहवाल सुना सके।
1: सामीन इकराम और हाजरीन, मैं इरफान आजमी अपने साथी शमीम उस्मानी के साथ उर्स महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया नई दिल्ली से आपसे मुखातिब हूं, जहां सुल्तानुल मशायख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें उर्स मुबारक की दूसरे शब की तकरीबात जारी हैं। इन तकरीबात में अब मनकबती मुशायरा मुनाकिद किया जा रहा है। आइए मुशायरे के आगाज में हम समाप्त करते हैं जनाब दिलकश जालौनवी से उनका मनकबती कलाम। जनाब दिलकश जालौनवी।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदिना व रसूलिना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। हुजूर सैयद फरीद मसाफुल्लाह निजामी मदरसा और तमाम शोरा कराम और तमाम सूफिया कराम, मसला समाज फरमाए कि क्या बयां हो मरतबा ख्वाजा निजामुद्दीन का, क्या बयां हो मरतबा ख्वाजा निजामुद्दीन का।

क्या बयां हो मर्तबा ख्वाजा निजामुद्दीन का, है शहे कौनैन से रिश्ता शहे निजामुद्दीन का, है शहे कौनैन से रिश्ता निजामुद्दीन का। क्या बयां हो मर्तबा ख्वाजा निजामुद्दीन का, है शहे कौनैन से रिश्ता निजामुद्दीन का। और हुस्न मतलब कि या इलाही उस पे हो साया निजामुद्दीन का, या इलाही उस पे हो साया निजामुद्दीन का, कर रहा है जो बशर चर्चा निजामुद्दीन का, कर रहा है जो बशर चर्चा निजामुद्दीन का, या इलाही उस पे हो। थोड़ा मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह कि या इलाही उस पे हो साया निजामुद्दीन का, या इलाही उस पे हो साया निजामुद्दीन का, कर रहा है जो बशर चर्चा निजामुद्दीन का। और खुश नसीबी है ये उनकी, उनके हैं आला मकाम। तुम्हारा फरमाए खुश नसीबी है ये उनकी, उनके हैं आला मकाम, जिन गुलामों को मिले सदका निजामुद्दीन का, जिन गुलामों को मिले सदका निजामुद्दीन का। खुश नसीबी है ये उनकी, खुश नसीबी है ये उनकी, उनके हैं आला मकाम, जिन गुलामों को मिले सदका निजामुद्दीन का। और ये शेर मिला था फरमा हुजूर आप सबक सुनते कि मरहबा उसकी निगाहों को हो दीदारे रसूल, मरहबा मरहबा उसकी निगाहों को हो दीदारे रसूल, ख्वाब में जो देख ले चेहरा निजामुद्दीन का, ख्वाब में जो देख ले चेहरा निजामुद्दीन का। मरहबा उसकी निगाहों को हो दीदारे रसूल, मरहबा उसकी निगाहों को हो दीदारे रसूल। समाज फरमाए मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह कि मरहबा उसकी निगाहों को हो दीदारे रसूल, ख्वाब में जो देख ले चेहरा निजामुद्दीन का, ख्वाब में जो देख ले चेहरा निजामुद्दीन का। और दें फरीद अहमद निजामी आज सुफैले पंजतन, समाज फरमाए मोहब्बत साथ कर सैयद जामी साहब वाला मौजूद हमारे सैयद जामी साहब। दें फरीद अहमद निजामी आज सुफैले पंजतन, दें फरीद अहमद निजामी आज सुफैले पंजतन, अरे महफिले सरकार में सदका निजामुद्दीन का, महफिले सरकार में, महफिले सरकार में, दें फरीद अहमद निजामी आज सुफैले पंजतन, दें फरीद अहमद निजामी आज सुफैले पंजतन, महफिले सरकार में सदका निजामुद्दीन का। और देख लो बस्ती निजामुद्दीन की आए मुनकरो, समाज फरमाए अब्दुल भाई माजी साहब कि देख लो बस्ती निजामुद्दीन की आए मुनकरो, बट रहा है चार सू सदका निजामुद्दीन का, बट रहा है चार सू, देख लो बस्ती निजामुद्दीन की आए मुनकरो, बट रहा है चार सू सदका निजामुद्दीन का। और सीरत अकदस पढ़ी मालूम ये मुझको हुआ, सीरत अकदस पढ़ी मालूम ये मुझको हुआ, अरे जलवा हसनैन है जलवा निजामुद्दीन का, जलवा हसनैन है जलवा निजामुद्दीन का। सीरत अकदस पढ़ी, पढ़ी लिया सीरे सीरत अकदस पढ़ी मालूम ये मुझको हुआ कि जलवा हसनैन है जलवा निजामुद्दीन का, जलवे सीरत अकदस पढ़ी मालूम ये मुझ

0: को हुआ जलवे हसनैन है जलवा निजामुद्दीन का और याद आए उसको दरबारे शहे कौनो मकान। याद आए उसको दरबारे शहे कौनो मकान, देख ले जो भी दिलकश देख ले रोजा निजामुद्दीन का, जो भी दिलकश देख ले याद आए उसको दरबारे शहे कौनो मकान, जो भी दिलकश देख ले रोजा निजामुद्दीन का। और क्या बयां हो मर्तबा, क्या बयां हो मर्तबा ख्वाजा निजामुद्दीन का, है शहे कौनैन से रिश्ता निजामुद्दीन का। और या इलाही उस पे हो साया निजामुद्दीन का, या इलाही उस पे हो साया निजामुद्दीन का। अरे कर रहा है जो बशर चर्चा निजामुद्दीन का। अस्सलामु अलैकुम।
1: आप थे जनाब दिलकश जालौनवी और अब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर नासिर मिसबाही साहब। मैं मुल्तमिस हूं डॉक्टर नासिर मिसबाही साहब से मनकबती कलाम पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं डॉक्टर नासिर मिसबाही।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मशायख इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए नाते पाक पेश करने से पहले एक बार झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हकम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशआर पेश खिदमत हैं, समाअत फरमाएं।

رخ جبی آریزا گیسو شہ والا کی.

0: مثل کے اشعار نے کیا خوب چمک پائی ہے.
1: کیا بات ہے.

0: रंग है शशदर सुखनाराई है। बहुत शुक्रिया।
1: डॉक्टर नासिर मिसबाही अपना कलाम पेश कर रहे थे और अब मैं दावत कलाम दे रहा हूं जनाब कासिम मियां नियाजी साहब को। जनाब कासिम मियां नियाजी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जनाब कासिम मियां नियाजी
2: चंद अशआर पेश है। हजरत महबूब इलाही

राजा मैं कहूँ कैसे भला है यूसुफ सानी निजाम। ओ मिल गया मुझको सुकून जब मुझसे ये दिल ने कहा। मिल गया मुझको सुकून जब

0: جاؤں
1: مل
0: با خدا پھر مل گئی اس کو حیات دار

जान। और शेर अर्ज है कि इनके दर पर रात दिन मेला लगा रहता है यू, इनके दर पे रात दिन मेला

0: कैसे भला है यूसुफ़े।
1: जनाब कासिम मियां निजामी अपना मनकबती कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब दर्द दानापुरी साहब से। जनाब दर्द दानापुरी।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना محمد بعدد كل ذرة مع الف الف مرة وبارك وسلم اے شرف نام نظامی زتو خاجگی ماست غلامی زتو۔ ایک منقبتی غزل بخدمت علی سلطان المشائخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زر بخش دہلوی کی شان میں आप हजरात की तवज्जो का तालिब। के बेखुदी क्यों न हो वहदत की घटा छाई है। बेखुदी क्यों न हो वहदत की घटा छाई है। अजी मैं गुसारा ने विलायत की तो ईद आई है। उसके पेश नजर के बेखुदी क्यों न हो वहदत की घटा छाई है। अब मैं गुसारा ने विलायत की तो ईद आई है। अशीर तवज्जो चाहता है कि हर घड़ी सागर ओ मीनाए तसव्वुफ का खुमार। हर घड़ी सागर ओ मीनाए तसव्वुफ का खुमार। अजी दरगहे शेख का तो रंग ही सहबाई है। दरगहे शेख का तो रंग ही सहबाई है। अशीर देंगे कि हो न जब तक तेरा दीदार न उठेंगे कभी। हो न जब तक तेरा दीदार न उठेंगे कभी। तेरे दीवानों ने चौखट की कसम खाई है। तेरे दीवानों ने चौखट की कसम खाई है। गुफरान दादा से तवज्जो चाहते हुए कि तुम तो हो दी का निजाम। तुम तो हो दी का निजाम और मैं हकीर अब्द निजाम। तुम तो हो दी का निजाम और मैं हकीर अब्द निजाम। मजहब इश्क की क्या खूब ये यकताई है। मजहब इश्क की क्या खूब ये यकताई है। और ये शेर बतौर खास हमारे यहाँ दानापुर में तकरीबन 20 पुश्तों से सदा सुहागी रंग चिश्ती निजामी खान का है। दानापुर की मशहूर, तो वहां सदा सुहागी रंग में आज भी बयत ली जाती है। तो शेर देखें और उस राह से मंजिल सुलूक तय करवाई जाती है। तो शेर देखें कि खिल गया रंग हिना दस्त फकीरी पे मेरी। खिल गया रंग हिना दस्त फकीरी पे मेरी। हाथ पर मेहंदी तेरे नाम की रचवाई है। हाथ पर मेहंदी तेरे नाम की रचवाई है। और शेर देखें कि कह दिया कालू बला पी के मए जामे अलस्त। कह दिया कालू बला पी के मए जामे अलस्त। मुझको तो रोजे अजल की ही शनासाई है। यहाँ वहदतुल वजूदियों का मजमा है। उस हवाले से ये शेर था कि ये शेर बतौर खास वजूदियों का कि जर्रे जर्रे में है नूर उसका न क्यों देखूं उसे। जर्रे जर्रे में है नूर उसका न क्यों देखूं उसे। मैं मुवहिद हूँ मेरा तौर भी हर जाई है। मैं मुवहिद हूँ मेरा तौर भी हर जाई है। अशेर देखें कि गुल है दहली में के पूरब का निजामी है कोई। अजी गुल है दहली में के पूरब का निजामी है कोई। वाला शहदा है सरकार का सौदाई है। वाला शहदा है सरकार का सौदाई है। अशेर देखें कि फातिहा हजरत महबूब इलाही पे पढ़ें। फातिहा हजरत महबूब इलाही पे पढ़ें। हर कठिन वक्त में अल्लाह की मदद आई है। हर कठिन वक्त में अल्लाह की मदद आई है। और ये मक्ते का शेर हाजिर खिदमत है कि हूं दमे वापस हो दमे वापसी बाली पे मेरे ख्वाजा निजाम। हो दमे वापसी बाली पे मेरे ख्वाजा निजाम। दर्द बेचारा बस इतने का तमन्नाई है। दर्द बेचार बस इतने का तमन्नाई है, अब बेखुदी क्यों न हो वहदत की घटा छाई है, अब मैं गुसारान विलायत की तो ईद आई है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
1: जनाब दर्द दानापुरी अपना कलाम पेश कर रहे थे और अब मैं दरख्वास्त कर

0: देखिए कि यह हुआ उनका निगाहें जिन पे डाली, हुआ उनका निगाहें जिस पे डाली, यह किरदार महबूबे इलाही। हुआ उनका निगाहें जिस पे डाली, यह किरदार महबूबे इलाही। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए बाकी आती शेर है कि चिरागों को किया पानी से रोशन, चिरागों को किया पानी से रोशन, वो है दरबार महबूबे इलाही। चिरागों को किया पानी से रोशन, चिरागों को किया पानी से रोशन, वो है दरबार महबूबे इलाही। और फिर देखिए कि रहे भूखे खिलाया सायलों को, रहे भूखे खिलाया सायलों को, ये था इशारे महबूबे इलाही। रहे भूखे खिलाया सायलों को, ये था इशारे महबूबे इलाही। और सरे मक्तशिर है देखिए, और शायद इसका शेर है शायद पसंद है, खरीदो या के बिक जाओ यहीं पर, फिर देखिएगा, खरीदो या के बिक जाओ यहीं पे, यह बाजार महबूबे इलाही। खरीदो, फिर देखिएगा, खरीदो या के बिक जाओ यहीं पे, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, खरीदो या के बिक जाओ यहीं पे, खरीदो या के बिक जाओ यहीं पे, यह बाजार महबूबे इलाही। और मक्ता में दुआओं से नवाजिएगा, करम की हो निगाहें अशरफी पे, करम की हो निगाहें अशरफी पे, अशरफी पे मेरे सरकार महबूबे इलाही, मेरे सरकार महबूबे इलाही। खरीदो या के बिक जाओ यहीं पे, खरीदो या के बिक जाओ यहीं पे, यह बाजार महबूबे इलाही, यह बाजार महबूबे। शुक्रिया बहुत बहुत।
1: साथ थे जनाब सैयद गुफरान अशरफी साहब। सामईनो हाजरीन, मैं आपसे उर्स महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया नई दिल्ली से मुखातिब हूं, जहां सुल्तानुल मशायख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें सालाना उर्स मुबारक की दूसरी शब की तकरीबात जारी हैं, जिसमें आप समात कर रहे हैं मनकबती मुशायरा। अब मैं दावत देना हूं जनाब रजी मियां नियाजी साहब को। जनाब रजी मियां नियाजी साहब मनकबती कलाम पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जनाब रजी मियां नियाजी,
2: ये इजाजत, मैं खानकाह नियाजिया बरेली से हाजिर हुआ हूँ।
3: सामीन अभी आप उस महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें उर्स मुबारक की दूसरी शब की तकरीबात का बराह रास्त अहवाल सुन रहे हैं। यह सिलसिला अभी जारी है, शब के 11 बजने को है। पहले सुनिए खबरें बरे सगीर से, इसके बाद हम आपको एक बार फिर ले चलेंगे उस महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन।
4: ये आकाशवाणी है, बड़े सगीर की खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत आवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वजीर आजम ने आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उदराय आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्ती

0: यहाँ मक्ते का शेर दे रहा हूँ अफजल भाई, ये शेर आपकी जानिब से दे रहा हूँ, शेर समाप्त फरमा लीजिए।
1: मेरी शौहरतों की न बात कर, मेरी शौहरतों की न

0: سبحان الله بابا
1: ايش هسه هسه اسمك
2: میری جارتوں کی نبات

0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शरीयत के गुलों की जिसमें खुशबू महकती है, शरीयत के गुलों की जिसमें खुशबू महकती है।

एडवोकेट सिराज मदनी निजामी साहब और खवातीन हजरात, में मनकबत के 5 शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। आप अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो एक बार सुभान अल्लाह कहने से हमारे हिस्से में 70 नेकियां आती है। मुलाजा फरमाए पेश।

0: भी आया,
1: बहुत शुक्रिया,
0: जो भी आया भोग, जो भी आया हो गया हजरत निजामुद्दीन का। समाप्त फरमाए हमारे ऑल इंडिया रेडियो के साथी इरफान भाई और इनके तमाम स्टाफ की नजर करता हूँ। ये शेर खास तौर पर तवज्जो फरीद मियां के चाहता हूँ।

0: फैज फिर जारी हुआ हजरत निजामुद्दीन का। मंतबर का मकता, मैं अपने तमाम पीर भाइयों की तरफ से आप सबकी नजर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं।
1: फरीद भाई आपकी नजर कीजिएगा।
0: पीर जामिन ख्वाजा अहमद और फरीद अहमद के साथ।
1: मुलाहिज़ा फरमाएं।
0: पीर जामिन ख्वाजा अहमद और फरीद अहमद के साथ है ये माजिद बेनवा हजरत निजामुद्दीन का है।
2: क्या बात है माजिद, वाह वाह वाह वाह वाह।
0: पीर अदब पीर जामिन ख्वाजा अहमद और फरीद अहमद के साथ है ये।

भारत। आमीन कहिएगा, जोर से कहिए आमीन। ये अपने मुल्क के अजीम की दुआ आज हो रही है, यहाँ सुबह कुल में भी हुई कि जय दुआए हर शत्रु से, कि जय दुआए हर दुश्मन से, बद नजरों से दूर रहे अपना भारत। यारा प्यारा या ख्वाजा महबूब।

प्रेम दया की आपने जिस पर प्रेम दया की आपने जिस पर अपनी दृष्टि डाली है भाग उसका भाग का उसके चमका

दिल से जब भी हमने पुकारा। और आखिरी शेर के, वक्त के तूफान गम के भंवर में चारों तरफ से घेरे हैं, वक्त के तूफान, वक्त के तूफान गम के भंवर में चारों तरफ से घेरे हैं, कश्ती दिल को दीजिए किनारा।

0: हमने पुकारा या ख्वाजा महबूब निजाम, आपने बख्शा हमको सहारा। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह।
1: डॉक्टर अफजल मंगलौरी अपने मनकबती कलाम से नवाज रहे थे। और सामीन और हाजरीन, इसी के साथ आज का ये मनकबती मुशायरा अख्तिताम पजीर होता है। उर्स महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया नई दिल्ली से मैं अपने साथी शमीम उस्मानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ सुल्तानुल मशायख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें उर्स मुबारक की दूसरे शब की तकरीबात जारी हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक अपने साथी शमीम उस्मानी को सौंपता हूँ।
2: सामईन हाजरीन, उस तकरीबात में अब दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन पीर ख्वाजा फरीद अहमद निजामी वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाएंगे।
3: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का पैगाम हिंदी में है, मैं लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। संदेश प्रधानमंत्री, हजरत निजामुद्दीन औलिया के 723वें उर्स के विशेष अवसर पर उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित उर्स महल में आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा सदियों से प्रेम, करुणा, सेवा और सद्भाव के मूल्यों से समृद्ध रही है। संतों, गुरुओं, पीरों और फकीरों ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से समाज को मानवता और परस्पर सम्मान का मार्ग दिखाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी हमारी इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया। मानव कल्याण, सामाजिक समरसता और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान का भाव हमारे राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ा है। आज भारत अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लेकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा निरंतर प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के हर परिवार तक पहुंचे और देशवासियों के जीवन में सुविधाएं व प्रगति के अवसर बढ़ें। इस यात्रा में सामूहिकता व एकजुटता की भावना हमारी बड़ी शक्ति है। उर्स का आयोजन हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं को स्मरण करने और सेवा एवं सद्भाव के कार्यों से जुड़ने का भी अवसर है। सूफी परंपरा ने संगीत, साहित्य और लोक संस्कृति के माध्यम से भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। उर्स के सफल आयोजन के लिए

0: एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 29 सितंबर 2026। शुक्रिया।
1: अभी दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन पीर ख्वाजा फरीद अहमद निजामी वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी का पैगाम पढ़कर सुना रहे थे। और शिजा खानी के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जामिया हजरत महबूब इलाही के मौलाना जुनैद आलम निजामी। मौलाना जुनैद आलम निजामी शिजा खानी पर फरमाएंगे।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بروح پاک مقدس مطہر منور سرور انبیاء برهان الاصفیاء افضل جملہ موجودات خلاصہ کل کائنات हुजूर शाफ़े महशर हुजूर सैयदना सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बरूह पाक मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरूह पाक हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बरूह पाक ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा फजैल इब्ने याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक ख्वाजा सुल्तान इब्राहिम इब्ने अरहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक ख्वाजा सदीदुद्दीन हुज़ैफतुल मराशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक ख्वाजा अमीनुद्दीन हुबैरतुल बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक ख्वाजा मुनशाद उल्वदीनवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक ख्वाजा अबू मोहम्मद बिन अहमद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती बख्तियार काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती गंज शकर मसूद पाक पटनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक अलल खुसूस बितफसीस बरूह पाक हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया चिश्ती दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरूह पाक हजरत अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या इला आलमीन 723वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर महबूब इलाही के उर्स के मौके पर तमाम लोग हाजिर हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा। अल्लाह महबूब इलाही की रूहानी फ़ैज़ व बरकात से हम सबको मालामाल फरमा। जो लोग लाइव सुन रहे हैं अल्लाह उन सबको महबूब इलाही के फैजान से मालामाल फरमा। दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा फरीद अहमद निजामी साहब को अल्लाह उम्र दराज अता फरमा। दीनो सुनियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सैयद सिराज मदनी निजामी साहब को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। और दीगर दरगाह शरीफ के जितने भी लोग सैयद अनफाल निजामी साहब जाफर निजामी साहब और हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के नायब सज्जादा नशीन साहब अल्लाह जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने जायरीन मौजूद हैं महबूब इलाही के सदके से इनके दिन में जो भी जायज तमन्नाएं हाजतें आरजूएं अपनी बारगाह से पूरी फरमा। अल्लाह तमाम लोगों के ऊपर अपना करम फरमा फजल फरमा महबूब इलाही का सदका अता फरमा। जिन जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा उन सबकी दुआएं तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। डॉक्टर वाहिद नजीर साहब की अहलिया बीमार है अल्लाह ने मुकम्मल सेहत और शिफा अता फरमा। हाफिज निजामुद्दीन साहब की नानी के इंतकाल हो गया अल्लाह उनकी कामिल मगफरत फरमा। अल्लाह हुजूर महबूब इलाही की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। उन्हीं के नक्शे कदम पर चला उन्हीं की मोहब्बत में जिला उन्हीं की मोहब्बत में उठा तो कल कयामत वाले दिन उन्हीं के दामन से लिपट के जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमा। आमीन वजाह सैयदुल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
1: شہید اخوانی فرما رہے تھے جامعہ حضرت محبوب الہی کے مولانا جنید عالم نظامی. سامعین حاضرین، عرس محل بستی حضرت نظام الدین میں خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب عرس محل میں محفل سما کا آغاز ہوتا ہے. ابتدا کے لیے رنگ اور قول پیش کریں گے خاص قوال رفیق احمد اور اعظم نظامی اور درگاہ شریف کی تمام چوکیاں.

0: मुताबिक 5 साल तक कर दिया है। मरकज ने अहल दिव्यांग जन और मुस्तफिदीन के लिए मुस्तस्ना फास्टैग की जारी किए जाने और तजवीज से मुतालिक रहनुमा खतूत पर नजरसानी की है। ये रहनुमा खतूत आज से नाफिजुल अमल होंगे। पहले की हदायत के मुताबिक दिव्यांग जन के फास्टैग की तजदीद हर साल लाजमी थी। नई हदायत के मुताबिक 70% से 100% माजूरी वाले अफराद को जारी करदा फास्टैग 5 साल तक कारामद रहेगा, जबकि 40% से 70% तक माजूरी वाले अफराद का फास्टैग 4 साल तक काबिल अमल रहेगा। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इक्तसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया है। पोलैंड के खजाना और इक्तसादियात के वजीर एंड्रजेज डुमांस्की ने भारत को आलमी सतह पर इक्तसादी रहनुमा और अहम शराकत दार करार दिया। जनाब डुमांस्की ने कहा कि पोलैंड भारत को एक बड़ी तेजी से तरक्की पजीर मईशत और जमहूरियत के तौर पर देखता है और वह भारत के साथ तवील मुद्दती तजारती ताल्लुकात कायम करने का ख्वाह है। मिलवॉकी में G20 मुल्कों के वज़राए तजारत की मीटिंग के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए पोलैंड के वजीर ने कहा कि वर्सोवा चाहता है कि पोलैंड, यूरोपीय यूनियन और भारत एक दूसरे के मजीद करीबी साझेदार बने। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में इक्तसादी ताल्लुकात में ज्यादा पेशगोई के काबिल और मुस्तहकम निजाम की अहमियत बढ़ती जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और पोलैंड के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद उसत देने के लिए काफी मौके हैं। सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े हादसे को टालने और बेशकीमती जिंदगियों को बचाने में गैरमामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर कप्तान स्मित मच्छार की तारीफ की है। इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हादसे को टालने पर कप्तान स्मित मच्छार को हीरो करार दिया। जनाब नेतन्याहू ने तल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवास पर सवार 174 लोगों की जिंदगियां बचाने पर कप्तान स्मित मच्छार का शुक्रिया अदा किया। जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में कल भारत ने 2 चांदी और 3 कांसे के तमगों समेत 5 तमगे हासिल किए। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश शिवाच ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में जापान के पहलवान यूरी नकाजेटो से 0-4 से हारने के बाद चांदी का तमगा जीता। मर्दों की हॉकी में भारत अपने रवायती हरी पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरी तरफ खवातीन की हॉकी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामीन, आइए एक बार फिर चलें उर्स महल बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली, जहां सुल्तानुल मसायख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 723वें उर्स मुबारक की दूसरी शब की तकरीबात का सिलसिला जारी है।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हुआ चाहते हैं। अब से चंद लम्हों के बाद ही खबरें नष्ट की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत आवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वजीर आजम ने आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। पोलैंड ने भारत के साथ मजीद मुस्तहकम और मजबूत इक्तसादी व तजारती ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया है। और जापान में जारी एशियन खेलों में भारत ने कश्ती रानी और ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबलों में चांदी के तारीखी तमगों समेत 6 तमगे जीते हैं। मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमें भी फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत आवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाले इदारों को भी मुल्क के जरूरी असलाहत पर काम करना चाहिए। कल नई दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की 7 साल तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम ने ऐसे नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों की नहीं बल्कि आवाम की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि इम्तिहान को सिर्फ एक अमल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि महज कुछ महीनों की ताखीर नौजवानों के लिए मुश्किलात की वजह बन सकती है और इसीलिए इम्तिहानी निजाम को मुकर्रर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वजीर दाखला अमित शाह ने दरीना महानदी आबी तनाजे को हल करने के लिए कल नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। जल शक्ति के मरकजी वजीर सी आर पाटिल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उदराय आला और दिगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। अमरीका ने ईरान की वजारत दिफा और मुसल्ला अफवाज लॉजिस्टिक्स MODAFL

0: संस्थानों का सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र कैपेक्स निवेश आशय कैपेक्स 2026 पर भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि यह सर्वेक्षण विशाल निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियोजित और क्रियान्वित पूंजी पर व्यय पर व्यापक और समयबद्ध जानकारी प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता को बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, उदयपुर और नालिया में वर्षा हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examination must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's food security measures and reaffirmed commitment to rules-based multilateral trading system. Participating in the opening day of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin, Mr. Goyal thanked the US G20 presidency for placing food at the center of the discussions. He said, ensuring food security for all and creating greater opportunities for farmers are central to India's policy. He reiterated that food must never be used as an instrument of pressure against any country. Mr. Goyal pointed out that countries of the Global South are among the most adversely impacted by the food, fuel and fertilizer crisis caused by global conflicts. The ministers reached consensus on the outcome document, G20 statement on the weaponization of food through coercive trade actions, and expressed their intent to continue cooperation on the subject. Captain Smith Mutcher, who was injured in the Fly Dubai flight incident, is in stable condition and recovering well, said India's ambassador to the UAE, Dr. Deepak Mittal. Speaking exclusively to Prasar Bharti, Ambassador Mittal said he met Captain Mutcher and his family in the UAE and found the pilot in good spirits. Dr. Mittal said the captain is receiving good medical care and that the Indian embassy remains in continuous contact with the UAE authorities. Meanwhile, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Machar for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. In Mizoram, three persons, including PIB Imphal Additional Director, General Dr. Imgampami, DD News Aizawl Director, Nampi Bo Marin Mai and CBC Aizawl MTS H. Lianwele were killed in a road accident near Sheol Souk yesterday. The car in which they were travelling fell into a gorge. Another person was seriously injured. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav condoled their deaths and expressed condolences to their bereaved families. The Defence Ministry also mourned the death of Nampibo Marin Mai, who had served as PRO Defence at DPR Headquarters and Director DD News Mizoram. President Draupadi Murmu has said Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. In her message on Gandhi Jayanti, President Murmu paid tributes to Mahatma Gandhi on his 157th birth anniversary. She said his lives and ideals are widely respected across the world and expressed confidence that India is advancing toward the goal of Viksit Bharat by 2047. Maharashtra Chief Electoral Office has said voters who received notices for no mapping or logical discrepancy during electoral roll revision will not be required to appear personally for hearings under revised ECI instructions. Booth-level officers will visit such voters' home to collect required documents based on which the Electoral Registration Officer or Assistant Electoral Registration Officer will take a decision. Voters can also submit documents to the concerned BLO through WhatsApp. Special polling station-wise camps will also be held tomorrow, Sunday, and on the 10th and 11th of this month, where voters can submit the required documents. Now on to the sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day yesterday with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Now India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. Men's hockey team defeated their arch rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं AIR Live News 24x7 आकाशवाणी के इस चैनल पर. आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम. कार्यक्रम है गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत. इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती.

फिल्म महल से आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, पुराने गीत गोल्डन एरा फिल्म संगीत सुन रहे हैं हम, गीत सुनहरे। और गोल्डन एरा की बात हो रही है तो इस फिल्म को तो भूलना नामुमकिन है, उस वक्त का सबसे डराने वाला फिल्म। जी हाँ, लोग उस वक्त ऐसी फिल्में देखते नहीं थे, ये सोचते थे कि बच्चों के साथ नहीं देख सकते, परिवार के साथ नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म में इस काम को देखा, इस फिल्म के गाने को देखा, सुना, और उनमें जब फिल्मों का अलग सा रूप नजर आया, तब जाकर ये गाना भी हिट हुआ और ये फिल्म भी हिट हुई। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो हिट हुए और वो गोल्डन एरा के गीत थे। और तो और, जब आप कहीं भी जाएं, कोई गीत गुनगुनाने को कहे, तो याद रखिए सबसे पहले याद तो आता है गोल्डन एरा की फिल्म।

फिल्म के इस गीत को सुरैया और श्याम की आवाजों ने सजाया। गीत इतना हिट हुआ कि आज भी हम उसे गुनगुनाते हैं। तो हिट गीतों का सफर चल रहा है एक तरीके से गोल्डन एरा फिल्म संगीत के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं वो फिल्म संगीत जो अपने जमाने में इतना मशहूर हुआ, इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि उसके हर गीत में एक खूबसूरती लोगों को नजर आने लगी थी। और गीतों का सफर है चुकी है तो आपको ये बताते हैं कि गीत में जब श्याम की आवाज़ सुरैया के साथ दी गई तो वो गीत बहुत ही सफल रहा और लोग श्याम को और काम करने के लिए मनाने लग गए।

लता मंगेशकर के स्वर ने इस गीत को और खूबसूरत बना दिया। कहते हैं गीतों में उस जमाने में जब लता मंगेशकर गीत के लिए आई तब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लोगों की चुनौती और साथ में रिजेक्शन उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किलदायक था। फिर क्या था, एक समय ऐसा भी आया कि सारे डायरेक्टर, इन लोगों ने सारे संगीतकार गीतकार सबकी एक टेस्ट नुमा लेने लग गए, जिससे वो लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उसमें से कोई भी गीत ऐसा नहीं था जो हिट ना हो। इस फिल्म के सारे गीत हिट थे।

वाकई में एक से एक बढ़कर खूबसूरत गीत, आवाज भी अलग तो भी गीत खूबसूरत। जी हाँ, अलग अलग गीतों को खूबसूरत बनाने का श्रेय जाता है संगीतकार और गीतकार और जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद गाने के लय को, धुन को अपने जीवन में उतार रहे थे, वो सब इस गीत के लिए तारीफ के काबिल है। कहते हैं इंसानों ने अपना काम बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी के बाद करना शुरू किया, लेकिन जब गीत संगीत का दौर शुरू हुआ तब लोगों ने मनोरंजन के साथ लगातार अनवरत काम करते चले गए। संगीत का जादू बिखेरता है उस 90s और 50s तक के दौर के बीच में। जब 50s में गीत शुरू हुआ तब उस वक्त गीतों को इतने सुनने का प्रचलन नहीं था। धीरे धीरे बदलाव आता गया और आज गीत और संगीत की दुनिया एक अलग ही और अनोखा ही रूप ले चुकी है।

जी हाँ, ख्यालों में किसी के इतना भी आया नहीं करते। और वाकई में गीतों के बोल तो देखिए, कह देते हैं ना सीधे ही कि सपनों में ना आया करो, लेकिन क्या खूबसूरत लाइन है, ख्यालों में किसी के भी इतना आके तड़पाया ना करते। गीतों का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस गीत को गाया था गीता दत्त ने और मुकेश ने। आगे बढ़े तो गीतों का वो दौर जहाँ महिलाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि एक समय था जब पुरुष साथी ही गीतों को खूबसूरत बनाते थे, लेकिन जैसे ही वो शुरुआत हुई, महिला साथियों ने भी अपने कदम से कदम मिलाया और खूबसूरत गीत से हम लोगों को सराबोर कर दिया।

बहुत ही खूबसूरत संगीत, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी। और वाकई में गीतों के बोल इतने खूबसूरत, तभी तो गीत भी सुंदर बन गया। लेकिन गीत गाने में जो संयम, जो ठहराव चाहिए होता है, एक संगीतकार ही उसे अपने हुनर से सही गा सकता है। हर किसी में संगीत और गीत की लय एक साथ, उसका समावेश एक साथ देखने का जब मौका मिलता है तो सुनहरे गीत का ऐसा ही सफर बनता है। और इन्हीं गीतों में से आइए सुनते हैं एक और फूल।

या फिल्म संगीत का वो दौर हम लोग सुन रहे हैं जिस दौर में फिल्म संगीत सबसे आगे था, वो दौर जो रेस था, उसमें ये गीत जो सुनहरे गीत थे, जी हाँ, गोल्डन इरा के सुनहरे गीत सबसे आगे और सबसे तूफान से आगे बढ़ा, क्योंकि उन गीतों में म्यूजिक और आवाज स्वर उसके साथ साथ धुन, उसके साथ साथ राग, उसके साथ साथ लिरिक्स, सब कुछ अपने चरम सीमा पर खूबसूरत तरीके से निभाया जाता था। तो फिर जो भी दौर हो, जो भी रेस हो, गीत तो आगे बढ़ेंगे ही, और यही कारण है कि उस जमाने के गीतों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, आज भी उनके घरों में उसकी अलग जगह है।

जी हाँ, ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, फिल्म सजा। और इस गीत के बाद अगला गीत भी उसी एरा का है, जिस एरा ने हम सबको एक खूबसूरत गीत सुनने का मौका दिया।

फिल्म संगीत ना जब हम सुनते हैं तब हमारा मन करता है कि वो गीत जो हमारे कान को और सुंदर बनाता है, उसमें रस घोल देता है, उन गीतों को अनवरत हम सुनते जाए। लेकिन वक्त की पाबंदी हर जगह होती है और यहाँ भी है। वक्त अब खत्म होने को है, गीत सुनहरे का ये सफर यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार, और आपके लिए एक गीत जिसे जरूर सुनिएगा। नमस्कार।

0: के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के न देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है हाय
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता, वहनीयता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा और भारत ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 70 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिद्धू ने कहा कि वार्ता का 5वां दौर सोमवार को ओटावा में शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष आगामी महीनों में वार्ता को अंतिम रूप दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के मेदचल मलकाजगिरी जिले के बच्चूपल्ली स्थित एक निर्माण स्थल पर उत्तर प्रदेश के 12 सदस्यों के एक परिवार को लगभग 1 वर्ष तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मेदचल मलकाजगिरी के जिला मजिस्ट्रेट और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बचाए गए सभी बाढ़ पीड़ितों की स्थिति और उनके वर्तमान ठिकाने, उनकी तत्काल सुरक्षा, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। RBI ने कहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। 10 अक्टूबर को भारत जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। शुरुआती 2 मुकाबलों के बाद भारत 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में अफगानिस्तान से खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हो।

कितना गवारा प्यार मेरा, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। 3 बजने को है, आप सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में कांग्रेस की उस सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। RBI ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना में घायल हुए कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने जानकारी दी। प्रसार भारती से विशेष बातचीत में राजदूत मित्तल ने बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में कैप्टन मछार और उनके परिवार से मुलाकात की और पायलट मछार को अच्छी स्थिति में पाया। डॉ मित्तल ने कहा कि कैप्टन को अच्छी चिकित्सा मिल रही है और भारतीय

आवास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा की संभावना जताई है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अगली दो गजलें आइए सुनते हैं भूपेंद्र साहब की आवाज में।
1: बिलाखिर भूपेंद्र, जो मशहूर प्लेबैक सिंगर भी थे और कंपोजर भी, गजल के इस सफर में शामिल हुए।

0: श्रोताओं, गजलों और गीतों के एक कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: वो शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से आवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, आवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इंकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तिरुनयना संबंधार की रचना पड़ी अदान से।

24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर समय होगा कार्यक्रम चिंतन का और 6:45 पर आप सुन सकते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 66। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकते हैं और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का और 7:25 पर आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा का गांधी समाधि राजघाट से सजीव प्रसारण। सुबह 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं और 8:45 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम गांधी चर्चा का। सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक और सुबह दस बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 10:10 पर समय होगा आपकी पसंद फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, आप समाचार होंगे।

साज खिढा दे मन जान गावे अछल छला गावे गुण तुम अटल मंडल गाय भगत पाए रख जाने कब कल।

अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठा।

गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा। गावे गुण शेष सहस जे बारस आदि अंत लिवलाग तुना। गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाने ओ। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ। राज जोग माने ओ बसियो निर्वैर रिदंतर। सृष्ट सगल युद्धरी नाम लै तरयो निरंतर। गुण गावे सन काल आदि जन कादि जुगे लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग। पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ। हर नाम रसक नानक गुर राज।

गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलरा सुपत पताल बसंता पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंता दूर बाप रूर अंगरे गुरु नानक जस गायो कब का सदस नानक गुर कट कट सहज समायो कब का सदस नानक गुर कट कट सहज समायो गुण गावे रविदास भगत जा देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवे सहजा तो रंग मारे योग ध्यान गुण ज्ञान बिना प्रवर न जाने सुखदेव परीक्षित गुण रवे गौतम वृक्ष जगायो कब का सजस नानक गुर नित नव तन दग छायो।

सरस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

0: बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: जाको मुन ध्यान तारे फिर तो सकल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बेरंच जस गावे। जाको सेव मुन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा।

द्रिद जावे नाम सो निधान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो सत गुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़।

गुरगम परमान तै पायो सत संतोख ग्राह जो हर परस्यो कल सुमूलवै जन दर्शन।